0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
1: सेंटर
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सुबह की कुछ आवाज़ें और खुशबुओं से दिन की शुरुआत होती है. मुझे पता है आप सब खुश हैं अपने अपने घरों में. आज की स्पेशल हम तो यही बात करेंगे, केतली की सीटी हो, पंछियों की चहचहाट हो और बेकरी से आती हुई गरम ब्रेड की खुशबू. मॉरिशस में तो यही सुबह सुबह की प्यारी सी आदत है, बस गर्मा गर्म ब्रेड आए और उसके ऊपर लगे थोड़ा सा बटर और साथ में हो हमारे प्यारी सी एक कप की चाय या कॉफ़ी की चाय. तो बस कहते हैं ना कि जब कप में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं. कई लोगों को आजकल नया फैशन शुरू हुआ है, कई लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लेते हैं और थोड़ी सी चाय डाल लेते हैं और देखते हैं उसका फ्लेवर कैसा आता है. तो हम भी यही कहते हैं, थोड़ा सा प्यार डालो आज सुबह सुबह में और थोड़ा सा अपने केयर करो. तो यही तो ज़िंदगी है. इस सुबह को अपने गानों के साथ में और आपके मैसेजेस के साथ में, जो आपको पता ही है, नंबर 5499 1294 पर. और हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, यानी कि राइज एंड शाइन की. और आप ही सबके लिए इतना ही हम कहेंगे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. इंजॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को और एहसास कीजिए मॉर्निंग कितनी खूबसूरत है.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:13 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं राइज एंड शाइन के साथ और मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम। आज यानी कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, अगर आप देखें तो आज है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि दिल का दिन। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और दिल की बात करें तो सबसे ज़रूरी है इसका ख्याल रखना, थोड़ी सैर, थोड़ा हंसना और थोड़े से तनाव से यानी कि थोड़ी सी टेंशनों से दूर रहना, यही तो दिल की असली दवा है। और ये दवा तभी मिलती है जब आप अपने आस पास देखते हैं कि आप सिक्योर्ड हैं, आपके फैमिली आपके पास है, आपके पास काम है, आपके पास अन्न है, आपके पास रोटी है, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं एंड ऑफ द डे रहता। हमारे पास यही खुशियाँ रहती हैं, यही यादें रहती हैं और यही उन सबका प्यार रहता है। चलिए जी, इसके साथ में एक और प्यारा सा डे है, आज है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, उन सब के नाम जो समुद्र में काम करते हैं। ये इस दिन रात जहाज़ों पर रहते हैं। मॉरिशस तो ऐसा द्वीप है जहाँ पर समुद्र भी पास है और हम समुद्र के अंदर रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो 6-6 महीने तक समुद्र के इनसाइड रहते हैं, काम करते हैं, दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं। तो हम तो उन सभी के लिए यही कहेंगे कि हमेशा वो लोग खुश रहें, उनका आवभगत करते रहें, स्वागत करते रहें हमारी कंट्री में, या वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो जो लोग पेरेंट्स यहाँ पर रह जाते हैं उन सब के लिए कहेंगे आज आपका डे है, अपने बच्चों को कॉल कीजिएगा, उनके उनसे उनका हाल चाल पूछिएगा। चलिए जी, एक और भी डे है, आज है फूड लॉस एवरेज। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा, लोग कई बार कहते हैं ना कि खाना ज़्यादा बना लेते हैं और फिर वो प्रॉपर उतना लोग होते नहीं हैं घर में और वेस्ट ज़्यादा होता है, तो आपको आज उतना ही थाली में खाना लेना है जितना आप खा सकें। आपको लगता है कि आप नहीं खा पाएंगे तो आप उसे रख दीजिए, फ्रीज कर दीजिए या उसको किसी को दे दीजिए, सबसे अच्छी बात होती है, अड़ोस पड़ोस में दे दो, बहन भाइयों को दे दो, किसी को ज़्यादा बन गया है तो पूछ लो कि आप दोबारा से खाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ एक ऐसी चीज़, और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप खा लें पर उसको वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने ये चीज़ें वेस्ट की तो फिर डे का फ़ायदा क्या। तो हम तो दिल को कहते हैं हमेशा से दिल का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, इंजॉय कीजिए राइज एंड शाइन।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: और फिर क्या होगा
1: पार्टियां दावतें

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:26 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे हम लोग आ जाते हैं आपके मैसेजेस लेके, क्योंकि जो आपके दिल में होता है आप सुबह सुबह लिखते हैं और हमारे दिल में जो होता है हम वो गाने चलाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे भी दिल का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, डैरन मालिनी, रवेश प्रशाल उवेशा साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, सायरा बानो जी इंजॉय कर रही हैं और इतने सारे फेस्टिवल्स आज हैं और उन सभी को एक एक करके आज वो कह रहे हैं कि हम मनाएंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं आज वेस्ट करने वाली कोई भी खाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दिल का भी दिन है और खाने का भी दिन है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। साधना जी लाल माटी से साथ दे रही हैं और आज उनके बड़े भाई जो कि उनके पापा के समान हैं, आज वो बीमार हैं और कुछ ज़्यादा बीमार हैं और चाहती हैं एक प्यारा सा गाना उनके नाम। हम तो पहले यही कहेंगे, साधना जी आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आपके भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जल्दी घर वापस आएंगे। आप बस दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बस हमेशा उनके साथ रहिए और देखिएगा कि सब ठीक हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, आरएमटी रेडियो मस्ती आपके साथ है और बहुत ही ये प्यारा जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, इतनी जल्दी नहीं टूटता।

0: बहुत लंबी उम्र होगी उनकी। धनेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में ही धीरज, आयुष, विदुषी, अश्विन, ज्योति, अर्विक, हार्विक फैमिली साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू। जयशन जी साथ दे रहे हैं और अपने पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि हॉस्पिटल तो पहुँच चुका हूँ, वहाँ पर टिम्बा, डैनो, जीवन, अंगूठिया, आकाश, श्रवण और मेविन साथ में कह रहे हैं कि साथ में हम पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं और साथ में ही हम इंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जब आप ये बात कहते हैं मेरा दिल बड़ा खुश होता है। सुरेश शर्मा साजदा जी इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं खोलते ही आंखें एक ही काम करता हूँ, सबसे पहले रेडियो ऑन करता हूँ और चेक करता हूँ RM2 रेडियो मस्ती लगा है या नहीं लगा। बिल्कुल लगा है, थैंक यू सो मच। इंजॉय कीजिए गानों को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:35 हो चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे गानों की फरमाइश आ रही है, पर क्या करें, हम तो पहले आपको ये बताएंगे कि आज स्पेशल डे किसका है। जी हाँ, स्पेशल डे है हमारे कॉमेडी के लाखों दिलों को जीतने वाले, उसका नाम है यस महमूद अली, यानी कि उनका निकनेम था महमूद। एक बॉलीवुड के वो एक्टर जिनका जन्म हुआ 29 सितंबर 1932 में मुंबई में। उन्होंने जो शुरुआत की थी वो किस्मत मूवी थी 1943 में, जहाँ पे वो बहुत छोटे से बेबी जैसे थे, बहुत ही छोटे से क्यूट से थे। और पर उन्होंने जब शुरुआत की तो उन्होंने बोला कि अब शुरुआत तो कर ही दी है तो क्यों इसको रोकना। उन्होंने 300 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई और उसमें ऐसे किरदार निभाए कि उनकी जो टाइमिंग हुआ करती थी ना, एकदम से क्लिक पकड़ लेते थे। और जो उनकी यादगार मूवीज़ में से आपको सभी को पता है कि पड़ोसन मूवी बहुत सुपरहिट रही, गुमनाम, भूत बंगला, प्यार किए जा जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही काम जो किया, उसमें हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं गुदगुदाहट हो जाती है। और जब गुदगुदाहट होती है तो नाम हमेशा आता है महमूद का, और महमूद का गाना हम ना चलाएं ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए जी, बहुत ही खूबसूरती से ये गाने को लेकर आए हैं हम, और आपको तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, मॉर्निंग की शुरुआत की है थोड़ी सी हंसते मस्ते, कहते हैं ना जब हंसते मस्ते गाते हैं ना और इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, तभी अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसी के साथ में हम तो अपने प्यारे से महमूद जी के लिए सबसे पहले चलाएंगे एक बहुत प्यारी सी चीज़, और उसके साथ में फिर चलाएंगे उनके लिए हैप्पी बर्थडे।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: गारे गारे
1: ये गरबड़ दे
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल दे
0: गारे गारे
1: ये हमक बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर ये इन्ना आया है तो
2: ये कचतुर नार हम छोड़े का नहीं।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला का
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत

0: one Bollywood station.
1: Your daily horoscope.
2: RM2 Radio Musti.
3: सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। मंगलवार की सुबह और आज सितारों में काम, पैसा, परिवार और आगे बढ़ने के अच्छे संकेत है। चलिए फटाफट जानते हैं अपनी राशि। सबसे पहले शुरुआत करते हैं
4: एरीज मेष राशि।
3: आज रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का दम रहेगा। ऑफिस में पहल कीजिए, आपकी बात सुनी जा सकती है। पैसों के मामले में सब बस खरीदारी सोच समझ कर कीजिएगा। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 5।
4: टॉरस वृषभ राशि।
3: आज काम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए रफ्तार संभाल कर रखिए। पैसों या बैंक से जुड़ी बातें जो हैं अपने आप तक रखिए और थोड़ा सा सेविंग करना शुरू कीजिए। भाई बहन या परिवार में से अच्छा सहयोग मिलने वाला है। लकी कलर बनेगा आपका वाइट, लकी नंबर है 6।
4: जेमिनी मिथुन राशि।
3: आज काम और घर दोनों को समय देना ज़रूरी होगा। खर्च सामने आए तो पहले ज़रूरी और गैर ज़रूरी में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी रहेगा। बच्चों या परिवार में कोई प्यारी बात खुशी दे सकती है। अगर आप उनके लिए कुछ शाम को कुछ लेते आएँ, थोड़ी स्वीट्स या कुछ जिससे उनकी शाम बहुत अच्छी हो जाए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है आपके लिए भी अच्छा फील कराएगी। लकी कलर बनेगा आपका येलो, लकी नंबर है 5।
4: कैंसर कर्क राशि।
3: आज कारोबार और पैसों के मामले में अच्छे संकेत आ रहे हैं। टीचिंग या कोचिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहने वाला है। घर और रिश्तों में अच्छा सहयोग बना रहेगा। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
4: लियो सिंह राशि।
3: आज हर काम में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स एक बार ठीक से देख लीजिए। सोच समझ कर उठाया गया कदम ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। लकी कलर बनेगा ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
4: वर्गो कन्या राशि।
3: आज आपकी मेहनत और काम दोनों नोटिस हो सकते हैं। सीनियर या अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी परफॉर्मेंस दिखाने का अच्छा दिन है। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 4।
4: लीब्रा तुला राशि।
3: आज बिजनेस में कोई अच्छी डील सामने आ सकती है। काम में कलीग्स और सीनियर्स का साथ मिलने वाला है। शाम दोस्तों या अपनों के साथ हल्की फुल्की खुशहाली रहेगी घर में। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 7।
4: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
3: आज प्रॉपर्टी या किसी सरकारी काम में आपकी बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है आप कुछ अप्लाई करने जा रहे हों, हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ डील करने जा रहे हों। आपको सहायता और सफलता ही मिलेगी। आपका साहस और मैनेजमेंट स्किल काम आने वाली है उस काम में। और हाँ, पसंद का खाना या अच्छा मूड बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है। कुछ अच्छा खाना है, लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 8।
4: सजिटेरियस धनु राशि।
3: आज काम अपनी रफ्तार से अच्छे से चलता रहेगा। कमाई या पैसों से जुड़ी कोई बात खुशी दे सकती है। परिवार का सपोर्ट दिन को तो आसान बनाएगा और आपकी वीक को भी बहुत आसान बनाने वाला है। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 9।
4: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
3: आज अकेले नहीं है, टीम के साथ चलिए, फायदा होगा। पार्टनरशिप के काम में भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। किसी दोस्त या रिश्तेदार की आपको मदद मिल सकती है, चाहे वो पैसों से, चाहे उनको किसी सहारे से या कोई कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर।

0: रहे हैं सिक्स। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज करियर से आगे बढ़ने का कोई मौका आपको सामने दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जो अटका हुआ काम था वो आज पूरा होने के चांसेस हैं। भाई बहनों के साथ पूरी कोई पुरानी बातचीत सुलझ सकती है, आपको कोई परेशानी थी वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। लकी कलर बनने जा रहा है ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी खूब काम आएगी। बजट संभालने में आप अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। दोस्त पड़ोस या जीवन साथी से कोई अच्छा सहयोग मिलने वाला है। बहुत समय से जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो पूरी होने वाली है। लकी कलर बनेगा आज आपका पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों आज जो मौका मिला है उसे पहचानिए, जो काम सामने आए उसे अच्छे से कीजिए, अपनों का साथ रखिए। मैं थी आपके साथ पूनम और इन्जॉय कीजिए अपना रेस्ट ऑफ द शो।
2: Your daily horoscope. RM2. Radio Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहेंगे।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार. पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 65 सेंट से बढ़कर 77 रुपये 70 सेंट प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71 रुपये 25 सेंट से बढ़कर 78 रुपये 35 सेंट प्रति लीटर हो गई है. ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया. नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की गई हैं. 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे. एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही हैं. साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है. इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है. आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है. हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसे खाना फेंका जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है. खाद्य पदार्थों की इस बर्बादी को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. और विदेश में यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं. 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है. और अब मौसम संबंधी जानकारियां. पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है. आज सुबह बादल घिरे रहेंगे. पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे. दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा. अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे. ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी. न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा. दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है. आज सुबह 5:53 पर सूरज निकला है.

और शाम 6:07 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन। Your news on NBC

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:12 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। कोई गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही मूड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, और ये गाना उन्हीं में से था जहाँ पर मेरे को तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, और मुझे लगता है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी पूरी एनर्जी ट्रांसमिट हो चुकी होगी। तो चलिए, ये तारों हैं और तारों से कहाँ से कैसे हमारे दिल के तार छिड़ जाते हैं हमें तो पता नहीं चलता, पर जो आपके मैसेजेस से दिल के तार छिड़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जी, ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं, सुपर्ब कह रही हैं कि मुझे शो बहुत पसंद आ रहा है और गाने सभी पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका आने का जल्दी जल्दी। साथ में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं किशन रघुनाथ जी सुरीनाम से, और साथ दे रहे हैं अपनी वाइफ और अपनी दोनों बिटिया रानी के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में हमारी एक प्यारी सी

0: दोस्त हैं जिनका नाम है बेबी, कह रही हैं मैं फ्रिज में खाना रखने ही जा रही थी बट आपका मैसेज मिल गया, अब फ्रिज में नहीं रखूंगी, खाऊंगी और थोड़ा सा सबके साथ अड़ोस पड़ोस में शेयर करूंगी। क्या बात है, सबसे अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और साथ में राजन देवी जी मिलान से साथ देती हैं और उनकी सिस्टर इन लॉ दीविका भुजन जी का आज बर्थडे है, उनको बेस्ट विशेज कह रही हैं और उन्हें कह रही हैं हमेशा साथ रहो मेरे, कहीं मत जाओ। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा था। साथ में हमारी एक और दोस्त जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है बेदास स्वामी और कह रही हैं आज पिंडदान का दिन है और सारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर में पूजा प्रेयर करने जा रही हूं, पर इतना ही सभी को कहूंगी माया जी सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा, आपकी प्रेयर जो होती हैं सबको लगती हैं। तो चलिए जी, बहुत सारे और भी लोगों के मैसेजेस हैं बट इतना ज़रूर बताऊँगी। ललित जी USA से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं इतनी देर से मैसेज कर रहा हूं, मेरा मैसेज प्लीज़ पढ़ दो। चलिए जी पढ़ दिया। बिडवाग विदेशी जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आज विद्या जी का बर्थडे है और उनके हबी विक्रम, ममरूमा भाई वशिष, नाना दीवान, नानी सीता उन्हें विश कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे प्रिधि, प्रथमी, प्रिया, निशा, नितिन, विशाल, यानेश सभी इंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ एक गाना उनके लिए हो जाए। मैं तो गाने आप सभी के लिए लगाती हूँ, बस सिर्फ इंजॉय आपने करना है, गाना सुनने का को चलाने का और सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने उसको अपने दिल में नहीं बसाया और जब तक उसके साथ डांस नहीं किया। चलिए जी इंजॉय कीजिए इन गानों को और थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ, पर उससे पहले आपको इतना बस कहेंगे गाने सुनते रहिए, RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

आज प्रिंस अभिनव का बर्थडे है, 9th बर्थडे है. मामा आशा पापा नवीन की तरफ से एंड पूरी जूथ फैमिली की तरफ से उनको विश कर रहे हैं. एंजॉय कीजिए गाने. जो नेक्स्ट गाना होगा वो आपके लिए होगा बच्चा.

0: on Bollywood Station.
1: छह बजकर 27 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। पर आपको सभी को इतना ज़रूर कहेंगे जो भी इस समय काम पे निकल रहे हैं, कुछ खा पी के जाइएगा, चाय पी के जाइएगा, ब्रेड खाइए, सीरियल खाइए, कुछ भी खाइए, पर इंजॉय भी कीजिए और पेट भी भरा रहे। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार।

0: भी किया।
1: नमस्कार, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। देश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है। और विदेश में यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन की कीमतों की दोबारा समीक्षा की गई। कल का दिन काफ़ी मुश्किल रहने के बाद नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी एनटीसी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि आज सुबह हालात में सुधार आने की उम्मीद है। इसके लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। एनटीसी के महानिदेशक डॉक्टर हरविंद सुनारान ने ये भी बताया कि करीब 50 नए ड्राइवर और बस कंडक्टर एनटीसी के स्टाफ को मजबूत करेंगे। ज़्यादा जानकारियाँ अशिता राघो के साथ।
2: कुल मिलाकर 100 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर काम के समय की नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ये नया रोस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम के घंटे शामिल नहीं किए गए हैं। सीएनटी मैनेजमेंट नई समय सारिणी को सही ठहरा रहा है और उसका कहना है कि ये व्यवस्था ज्यादा समान और न्यायसंगत है। सीएनटी के रीजनल मैनेजर गोविंद रामदीन कहते हैं कि कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों में कहा गया है कि काम के घंटों में कमी है, जैसे जो रिलीफ के लिए आते हैं वे केवल 4 घंटे काम करते हैं। मांग प्राप्त करने पर उन्हें भी 8 घंटे दिए गए। इनमें आईटी और ट्रैफिक सुपरवाइजर साथ मिलकर काम उन्होंने किया, जहां पर सभी पदों और ड्यूटीज पर काम किया गया और सभी कर्मचारी के लिए 40 से 45 घंटे प्रति सप्ताह समान रूप से काम करने के लिए दिया गया है। दूसरी ओर सीएनटी के जनरल मैनेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सुनारायण कहते हैं कि एआई

0: एक लोकतांत्रिक साधन है जहां कर्मचारी और रिलीफ के लिए आने वाले लोगों के बीच संतुलन बनाता है। मैं आश्वासन देता हूं कि रिलीफ कर्मचारियों को बेहतर ढंग से देखा जाएगा। परिवहन मंत्री की ओर से कहा गया है कि बातचीत के जरिए इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। मंत्री उस्मान मोहम्मद कहते हैं कि सीएनटी मैनेजमेंट ओछी हरकत के जरिए ये जरूरी बदलाव नहीं कर रहा है बल्कि इसकी आवश्यकता है। स्थिति गंभीर है, उपलब्ध संसाधन के साथ काम करना पड़ रहा है। बदलाव ही चिंता का विषय है और इसका विरोध किया जा रहा है। मैं कर्मचारियों से समझ बूझ की मांग करता हूं, संतुलन बनाए जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो और सीएनटी सुचारू तरीके से कार्यरत रहे। हम सही दिशा में जा रहे हैं जिसमें कोई परेशानी न हो।
1: एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो एसटीसी की हॉटलाइन 5944-3434 पर उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। करुणा लालू को सुनते हैं।
2: एसटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस के लिए आपूर्ति के अन्य स्रोतों पर विचार किया जा रहा है, खासकर पड़ोसी देशों में। उद्देश्य मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं और बाजारों के विकल्पों को बढ़ाना है। फिलहाल चावल की आपूर्ति मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और दुबई स्थित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से होती है। अभी तक किसी नए देश को आधिकारिक रूप से तय नहीं किया गया है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही इस संबंध में फैसला होने की उम्मीद है। मुद्दा ये है कि मध्य पूर्व में समुद्री परिवहन में आई बाधाओं के कारण कुछ खेपों में देरी हो रही है। पाकिस्तान से रवाना हुई 3 चावल की खेपें अक्टूबर में मॉरिशस पहुंचने की उम्मीद है। प्रत्येक खेप में लगभग 500 टन चावल हैं और इन्हें श्रीलंका के रास्ते लाया जाना है। पहली खेप के लगभग 18 अक्टूबर और बाकी 2 के लगभग 20 अक्टूबर को पहुंचने की प्रत्याशा है। इस बीच एसटीसी अपने स्टॉक प्रबंधन को समायोजित कर रही है। वो प्रतिदिन 2.5 किलो के 12,000 पैकेट का स्टॉक बनाए रखती हैं और कुछ दुकानों को सीधे आपूर्ति करने के लिए अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें खासतौर पर छोटी दुकानें और दूरदराज के इलाके शामिल हैं। इस व्यवस्था का मकसद घबराहट में या ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी, पैनिक बाइंग को रोकना भी है, क्योंकि इससे स्टॉक तेजी से खत्म हो सकता है।
1: सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर आत्सू की हालिया चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयां उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नाडेक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर केवल एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। चीनी की बिक्री से 2025 में 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी, लेकिन गन्ना उद्योग के सामने जमीन और मजदूरों का सवाल अभी भी है। पोर्ट लुइस में मॉरिशस सुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पदमुक्त अध्यक्ष निकोला मेखो ने बगास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग की और पहले गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाली करीब 10,000 एकड़ खाली जमीन को फिर से खेती में लाने की अपील की। मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार गन्ना क्षेत्र में काम करने के लिए 600 विदेशी मजदूर दिसंबर में आएंगे। ज्यादा जानकारियां इस रिपोर्ट में। मॉरिशस का गन्ना उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक संघों की कमी और गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कमी शामिल है। शुगर सिंडिकेट के वर्तमान अध्यक्ष निकोला मेखो ने बताया कि 2025 की फसल के लिए उत्पादकों को प्रति टन चीनी 24,095 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल के लिए ये कीमत 27,478 रुपए थी। 2025 में चीनी की बिक्री से होने वाली आय 10.4 बिलियन रुपए रही।

0: जबकि पिछले साल ये 11 बिलियन रुपए थी। अब खास शक्कर का हिस्सा कुल उत्पादन का 60% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 54% था। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने बगास के लिए दिए जाने वाले दाम की समीक्षा की मांग की है। साथ ही कुछ आयात की जाने वाली चीनी से स्थानीय बाजार को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने की भी मांग की गई। निकोला मेखो कहते हैं, बायोमास के दाम पर फिर से गौर करना होगा। आज बगास का दाम 3.50 रुपए प्रति किलोवाट है। मंत्री ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की तो दाम भी बढ़ना चाहिए, इससे अन्य सेक्टर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे स्थानीय बायोमास की पैदावार करने के लिए।
1: Qui aussi incitera d'autres secteurs à planter, par exemple, pour faire de la biomasse locale.
0: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कहा कि बायोमास गणना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार बायोमास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग पर अध्ययन करेगी।
2: Nous paierons dans ce qu'on appelle production de l'électricité à partir de biomasse.
0: बायोमास से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 3.50 रुपए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसे बढ़ाना होगा, इससे बायोमास आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्पादन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2025 में 33,805 हेक्टेयर जमीन से गन्ने की कटाई की गई और कुल 2,20,305 टन चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आज भी खाली है। महासभा के बाद नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सचिन सुकना को नया अध्यक्ष चुना गया है। वे इससे पहले शुगर सिंडिकेट के उपाध्यक्ष के पद पर थे। आज मंगलवार को खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है। इस दिन लोगों को ज़रूरत के अनुसार खाना खरीदने, बचा हुआ खाना सही तरीके से इस्तेमाल करने और खाने की बर्बादी को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। करुणा लालू।
3: मॉरिशस में हर मिनट में लगभग 279 किलो ऐसा भोजन जो अभी भी खाने योग्य है फेंक दिया जाता है। इसमें खास तौर पर फल और सब्जियां शामिल हैं। दुनिया भर में उत्पादित खाद्य पदार्थों में से लगभग 13% फसल की कटाई से लेकर खुदरा बिक्री तक के बीच नष्ट हो जाते हैं। वहीं लगभग 19% भोजन घरों, रेस्तरां और दुकानों में बर्बाद होता है। आज 29 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और बर्बादी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मकसद खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने और भोजन की हानि को रोकने के प्रति लोगों को आगाह करना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल बड़ी मात्रा में भोजन उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने के दौरान नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। इसका असर केवल खाद्य सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इस अवसर पर लोगों से अपील की जाती है कि वे जरूरत के अनुसार ही भोजन खरीदें और परोसें, बचे हुए भोजन का उचित उपयोग करें और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने में अपनी भूमिका निभाएं। भोजन की बर्बादी कम करना खाद्य सुरक्षा और एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सांसद वेरोनिक ले गोविंद की पति गुलशन गोविंद को कल रिवियनवा की जिला अदालत में जमानत दे दी गई। उन पर गांजा उगाने और मेटाडोन रखने के आरोप लगे हैं। अदालत का मानना है कि भले ही संदिग्ध पश्चिमी तट के पास रहता है और कुछ स्कीपर्स को जानता हो, लेकिन उसके फरार होने का खतरा पुलिस की सिर्फ आशंका है। हालांकि उसे समुद्र तट से 200 मीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। गुलशन गोविंद फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि उन पर करीब 155 किलो गांजा आयात करने की साजिश का भी एक अंतरिम आरोप है। इस गांजे की कीमत ट्रेनियन टापू में लगभग 234 मिलियन रुपए आंकी गई है। सुनवाई के बाद उन्हें दोबारा पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अदालत 6 अक्टूबर को उनके वकील रूबेन मोगोंगा पीले की ओर से इस अंतरिम साजिश के आरोप को हटाने के लिए

0: लिए डायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। मॉरिशस में कुछ घावों का भरना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2024 में मधुमेह से पीड़ित मरीजों में निचले अंगों को काटने के 365 नए मामले दर्ज किए गए। इनमें 224 पैर की उंगलियों, 10 पैर, 34 घुटने के नीचे और 97 घुटने के ऊपर किए गए एम्प्यूटेशन शामिल हैं। आज रोजबेल अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर केनिगेन मानिक्यू पिछले कई वर्षों से एक बायोमेडिकल मैश पर काम कर रहे हैं। ये एक तरह का जाल है जो बहुत ही महीन रेशों से बनता है। इसका उद्देश्य घाव के आसपास के मांस को बेहतर तरीके से दोबारा बनने में मदद करना है। आगे चलकर इस टेक्निक के जरिए कुछ दवाओं का उपचार को सीधे घाव वाली जगह तक पहुंचाना भी संभव हो सकता है। अगर मॉरिशस का ये प्रोजेक्ट व्यावहारिक रूप लेता है तो ये एक महत्वपूर्ण प्रगति साबित हो सकता है, खासकर मधुमेह से जुड़े पुराने और लंबे समय तक न भरने वाले घावों से पीड़ित मरीजों के लिए। डॉक्टर केनिगेन मानिक्यू बताते हैं कि ये मेष कैसे काम करता है, शोध किस चरण में है और मॉरिशस के मरीजों के लिए इससे क्या फायदे हो सकते हैं। उनसे बात की Adrien Valier ne yachna mishra ka vibran.
1: Soigner les plaies qui sont très difficiles à guérir, je parle par exemple des hernies, les plaies chez les diabétiques, surtout dans leurs pieds.
2: ज्यादा गंभीर जख्म के इलाज जैसे हर्निया या मधुमेह से पीड़ित लोगों के पैरों पर लगे घाव के इलाज के लिए हम एक नए पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज में ज्यादा अच्छे से घुल जाते हैं। 2-3 दिनों में ही ये मैश घुल जाता है। इन मैश फाइबर्स में हम दर्द कम करने के लिए दवाइयां भी घोल सकते हैं, जैसे लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन, एनाल्जेसिक दवाइयां आदि। फाइबर को तैयार करने के लिए प्रयुक्त घोल में ही इन सभी दवाइयों को डाला जाता है। ये आमतौर पर खतरे से खाली हैं, क्योंकि जिन पॉलीमर्स का प्रयोग हम करते हैं वे शरीर में घुलकर एस्पर्टिक एसिड बन जाता है, जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हैं। अभी के लिए ये प्रारंभिक चरण है, कई चरण और बाकी हैं जब तक कि हम क्लिनिकल ट्रायल के स्तर तक नहीं पहुंच जाते।
1: स्टेज très très préliminaire, donc il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour pouvoir arriver aux clinical trials.
0: नाइट मार्केट, जो मौसमी दुकानदारों के लिए आयोजित किया जाता है, साल के अंत में होने वाले त्योहारों को देखते हुए राजधानी की पूर्व देफोश गली में फिर से लगाया जाएगा। ये आयोजन 12 दिसंबर से अगले साल 4 जनवरी तक चलेगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और इससे जुड़े अलग अलग पक्षों के साथ कई बैठकें और विचार विमर्श किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधियों, पुलिस, नगर परिषदों और संबंधित चुनाव क्षेत्र के सांसदों के साथ पहली बैठक लगी। इसका मकसद उनके सुझाव लेना, जरूरी व्यवस्थाओं की पहचान करना और खास तौर पर पिछले आयोजन के दौरान सामने आई परेशानियों पर चर्चा करना है। और विदेशी खबरों में, यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहेली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहेली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है।

0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो खाने योग्य होता है। और यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें अर्पणा का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: On NBC Play and NBC.mu.
0: Sir Virgil Nas Budhan Lane, Rizal mein 88 saal ki 88 year old ki Mrs. B.B. Hasma Maghu, jo Hasma se zyada jaani chahti thi, intikal kar gayi hain. Janaza aaj din ke 11 baje unke ghar सर वर्जिल नास बुढ़न लेन रिजिल से उठाकर सैमोते मोहुश का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। नंबर 69 अवेन्यू पिटोनिया मोसेल मोमोत्रियाल कोरोमोंडेल में 76 साल के 76 ईयर ओल्ड के जनाब खालिक भुगन, जो खालिक भुगन से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले करीमजी में काम करते थे, की मृत्यु इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे बिलाल भगन के घर नंबर 69 एवेन्यू पिटुनिया मुसलमान मुखयाल कोमोडेल से उठाकर गिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 42 रुत कोकोटरी रोशबुआ में 69 साल के 69 ईयर ओल्ड के श्री मुनीलाल दुल्ला, जो रोहित से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे नेश्वर दुल्ला के घर नंबर 42 रुत कोकोटरी रोशबुआ से उठाकर सिपाही भूले वाले दे प्रैत्र की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। ऑंग्रे काटन ओकुले में 51 साल के 51 ईयर ओल्ड के श्री शास्त्री गनगन्ना, जो बोडो से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके भतीजे विराज गनगन्ना के घर ऑंग्रे काटन ओकुले से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। प्रीमिशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड डिफ्रिया में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती विदेशी, जो ललिता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी अंबिका बिहारी के घर रॉयल रोड डिफ्रिया से उठाकर डिफ्रिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। टोमासन रोड क्रेवकियर में 79 साल के 79 ईयर ओल्ड के श्री सत्यानंद गुरबिन, जो कोलंबो से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे

0: उनके घर टोमासन रोड क्रेवक्योर से उठाकर क्रेवक्योर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। सुभाष चंद्र बोस लेन ग्रैंड पॉइंट पीमो में 37 साल की 37-year-old की श्रीमती नीलम हुसैन पैदाइश नाम कालचंद और जो नीलम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके पिता रामचंद्र कुमार कालचंद के घर सुभाष चंद्र बोस लेन ग्रैंड पॉइंट पीमो से उठाकर पैंतु बीस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। श्री मेमाशेन पाल्मा काथोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बकोरी जो रामेश से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर श्री मेमाशेन पाल्मा काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। मिमोजा रोड सैं रेमी फ्लाक में 80 साल की 80-year-old की श्रीमती सुभावती रामरखा जो दादी मशाला फौ से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मिमोजा रोड सैं रेमी फ्लाक से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 3 बैटका लेन स्टैनले रोजिल में 77 साल के 77-year-old के श्री पुनसामी पिले मुतुसामी जो तौबी से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पूर्व पुलिस कॉर्पोरल थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10:15 बजे उनके घर नंबर 3 बैटका लेन स्टैनले रोजिल से उठाकर कॉलेव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10:15 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे. अरे जी हाँ, 7:06 हो चुके हैं. अब घर से निकलना भी है, काम पर भी पहुंचना है और सुबह का मूड भी अच्छा रखना है. तो जल्दी अपनी जगह पकड़िए, कार में हो या बस में हो या घर में ही बैठे हो, तो बस कहीं सोफे पर बैठ जाओ और आराम से अगले 2 घंटे RM2 के साथ रहिए. मैं हूँ आपके साथ पूनम मॉर्निंग बीट में. सुबह 7:06 और हम तो आपको इतना ही कहेंगे, बस आपने भूलना नहीं है. किसी को डेडिकेशन करना या कोई स्पेशल मैसेज है किसी के बर्थडे के लिए, तो आपको हमें मैसेज करना है 5499124 पर. और शो को बनाते हैं मजेदार क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं. एंजॉय कीजिए अपने ये 2 आवर्स मेरे साथ, यानी कि पूनम के साथ.
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सात बजकर 7:15 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही मॉर्निंग बीट के साथ। और आज हम थोड़ा सा हंसना बनता है, थोड़ा मस्ती करना बनता है, क्योंकि आज है बर्थडे बॉलीवुड के उस कलाकार का जिसकी शक्ल स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं महमूद साहब की और आज हम उन्हें याद करेंगे। आज चाहे वो हमारी दुनिया में नहीं है पर फिर भी उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका पर्सनैलिटी आज भी हमारे साथ है। जिनको भी उनके गाने पसंद है और जो स्पेशली ये वाला गाना है, ये आप सभी का मूड बना देगा। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर ही लेते हैं।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

पहले तालियां तो बजाओ।

0: Listen to
1: Radio Musty.
2: Doux.
0: Ça, ça veut dire que ça croustille.
2: Doux.
0: Ça, ça veut dire que c'est spicy.
2: Doux.
0: Ça, ça veut dire que c'est bon.
2: Doux.
0: Et ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le plaisir du croustillant et du goût dans une recette végétale. Les produits Doux Veggie disponibles en nuggets, émincés, panés et chunks. Doux Veggie, c'est vraiment veggie veggie good.
3: Moments that matter with Sikom.
4: जोन लम्हा हमनी खातिर मायना रखेला समय के रहत हमनी के चाही ओकर खातिर तैयारी करे के एक दिन ऐसन आए जब काम की गति धीमा हो जाए और फिर पूरा थम जाए तब जीवन के एक नवा अंदाज में जिए के पड़ी जोन आज दूर लौकता काल वो उतना दूर नहीं रही पर तुहर आर्थिक भविष्य हमेशा जरूरी रही सिकोम के पर्सनल पेंशन योजना और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के संगे अपन बचत पर खुद नियंत्रण रखिया और अपन भविष्य के बेहतर तैयारी करा सिकोम लगे तो हर गोल्स और इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग समाधान मौजूद बाटे सिकोम तो हर आज काल और उस सब खास लम्हा खातिर जो मायना रखेला जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikom.mu पर जाइए नियम आशर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: इट वॉज मोमेंट्स दैट मैटर विद सिकोम
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: 7:25 हो चुके हैं. ठुमक ठुमक करके जो जाने वाले हैं ना, उनमें से कई वो भी लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, जिनकी अर्ली ड्यूटी पर पहुंचते हैं और फिर रात को लेट तक काम करते हैं, फिर सुबह सुबह घर जाते हैं. और आप लोग कुछ ऐसे हैं जो अभी रात भर सोए हैं और सुबह सुबह जाएंगे काम पर, तो हम तो उन्हीं को कहेंगे भाई ठुमक ठुमक के चल लो जहां भी जिसको जाना है, पर आराम से घर पहुंचो या ऑफिस पहुंचो. अगर कहीं पर आप बस का इंतजार कर रहे हैं या मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं या अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे. थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखिए, बिल्कुल उदासी वाला चेहरा मत रखिएगा, क्योंकि उदासी वाला चेहरा ना तो खुद को अच्छा लगता है ना ऑफिस वालों को अच्छा लगता है, और जो भी काम होता है ना वो ठप ठप ठप ठप हो जाता है. तो अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल रखिए, अपने कलीग्स के साथ में जाके घुल मिलकर हेलो हेलो शेक हैंड कीजिए, क्योंकि जब आपको एक बॉन्डिंग बनती है ना अपने दोस्तों के बीच में, कलीग्स के बीच में, तो काम भी बहुत अच्छा होता है और पता ही नहीं चलता अरे सुबह कब हुई और शाम कब हो गई. तो चलिए जी एंजॉय करते हैं इन गानों को. पर आपको पता है लोलो हाइपर की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर मिलता है जिनका बर्थडे होता है और जिनको हमारे को दिल तो करता है अभी परेशान करने का, पर क्या करें हम जब उनको वेट कराने को बोलते हैं तो वो फोन कट कर देते हैं. तो प्लीज फोन मत कट कीजिएगा और उन्हीं का नंबर दीजिएगा जो आसपास रहिएगा, देखते रहिएगा कि वो वहीं रहें और उन्हीं से बात हो और क्या कहते हैं वो बात कर सकें, थोड़ा सा हम उन्हें परेशान कर सकें और थोड़ी सी गप्पे पे हो जाए, मॉर्निंग की थोड़ी सी ट्विस्ट दे देते हैं. चलिए जी एंजॉय करते हैं गानों को और साथ में ये बोलते हैं आपको ये गाना आप सबके लिए बहुत ही प्यारा है, मजा आएगा आपको.
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: सात बजकर 40 मिनट हो चुके हैं और जरा गानों से निकल के मैदान में चलते हैं क्योंकि हमारे वहां पर

0: स्पोर्ट्स गुरु तैयार हैं अरविंद, जो आज के खेल के पिटारे में क्या लेकर आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
1: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कैफे नेशंस लीग के ग्रुप A1 में फ्रांस एग्जैक्ट ओ रेंडेवू और इटली के स्क्वाड्रा अजूरा की ओर से बहुत दिनों बाद फोर्जा इटालिया। बेल्जियम के यहाँ जिनेदीन जिदान के ले ब्लू जीत पाए 1-0 से मैच के अंतिम मिनटों में माइकल ओलिजे का गोल, सुपर्ब लेट सोलो गोल रहा। किलियान एम्बापे इंजुरी के कारण नहीं था, ऐसे में फ्रांस के मुर्गों को

इंजुरी के कारण नहीं था, ऐसे में फ्रांस के मुर्गों को जाकर टर्की को पीटा 4-1 से। बास्टोनी फ्रटेजी कायोदे फर्स्ट हाफ में स्कोर कर पाए, फिर सेकंड हाफ में एस्पोजिटो का गोल। स्क्वाड्रा अजूरा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मानसिनी को फिर से बुलाया गया। इस नेशंस लीग से इटली को बहुत उम्मीदें हैं। ग्रुप टू में जॉर्जिया 0 यूक्रेन 0, आर्मेनिया 2 मोंटेनेग्रो 3, लात्विया 0 साइप्रस 0, नॉर्दर्न आयरलैंड और हंगेरी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। ग्रुप फोर में रोमेनिया 2 बोस्निया 4 स्वीडन 3 पोलैंड 1, ग्योकोरेस का एक गोल रहा स्वीडन के लिए। आज स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से, ये ग्रुप ए 1 में है, और चेक रिपब्लिक इंग्लैंड का स्वागत करेगा। पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने न्यू वेम्बली स्टेडियम में जाकर इंग्लैंड को हराया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद लागोगा का पहला होम मैच होगा, जबकि चेक रिपब्लिक में इंग्लैंड को संभलना होगा। आज के अन्य फिक्स्चर्स, फिनलैंड बेलारूस, स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया नॉर्थ मैसिडोनिया, सान मारिनो अल्बेनिया, मोल्डोवा फारो आइलैंड्स, स्लोवेकिया कजाकिस्तान, बुल्गारिया एस्टोनिया और लुक्जमबर्ग आइसलैंड। आज के फ्रेंडली मैचों में ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के खिलाफ खेलेगा, रशिया ईरान। कल के फ्रेंडलीज में जापान ने वेनेजुएला को 2-1 से हराया और उरुग्वे की जीत 4-1 से साउथ कोरिया पर नूनेस का डबल रहा। काफ अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की बात करें, ग्रुप ई में कल इक्वाटोरियल गिनिया ने 1-0 से सियेरा लियोन को हराया, जिम्बाब्वे को हराया कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने 2-1 से। ग्रुप एफ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0 बुर्किना फासो 1, ग्रुप एच में ट्यूनिजिया 2 बोत्सवाना 2। आज ग्रुप ए में लेसोथो का मुकाबला मोरक्को से, गाबों खेलेगा निजेर के खिलाफ। ग्रुप बी में सूडान वर्सेस इजिप्ट, मोहम्मद सलाह सूडान के खिलाफ नहीं खेलेगा क्योंकि वहां के मैदान में आर्टिफिशियल टर्फ है, ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहते अपने स्टार खिलाड़ी के साथ। ग्रुप सी में गाना गाम्बिया, सोमालिया आइवोरी कोस्ट, ग्रुप एफ में बेने मोरिटानिया, ग्रुप जी में कोमोरो आइलैंड्स नामीबिया, कोंगो कैमरून, ग्रुप एच में युगांडा वर्सेस लीबिया, ग्रुप आई में बुरुंडी अल्जीरिया जाम्बिया टोगो, ग्रुप जे में इथियोपिया सेनेगल मोजाम्बिक सूडान, ग्रुप के में केप वर्दे रुआंडा लिबेरिया माली, ग्रुप एल में मादागास्कर तंजानिया गिनिया बिसाओ नाइजीरिया। 15 अक्टूबर को फीफा काउंसिल की बैठक लगेगी और प्रेसिडेंट इन्फांटिनो फीफा के सदस्य देशों को ज्यादा पैसा देने के बारे में सोच रहा है। 211 मेंबर हैं, लगभग 4.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग कैश रिजर्व में से पैसे निकाले जाएंगे। मार्च 2027 में फीफा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इन्फांटिनो फिर से खड़ा होगा। नवंबर 2026 तक अन्य उम्मीदवारों के नाम भेजने होंगे। एशियन गेम्स की क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल नहीं खेला गया, जापान में बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद खेला नहीं गया, मैच वॉश आउट, ऐसे में टीम इंडिया ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंची। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश और मलेशिया के बीच, इधर इंग्लैंड की ए टीम और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू, और इंडिया अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 में इंडिया की अंडर 19 टीम 430 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के 217 रनों के जवाब में। लक्ष्य राय चंदानी 210 पर नॉट आउट हैं। इधर बैडमिंटन में केप टाउन सीनियर इंटरनेशनल्स में मॉरिशस के लिए 8 मेडल, सू सिंह स्टीलियो चेंग त्यान चोंग सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीत पाया, फिर तिया चंग के साथ मेंस डबल में भी गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल रहे, एक अनिरुद्ध जगेसर, फिर दूसरा हरिमन स्वतंत्रा तानंद और अनिरुद्ध जगेसर डबल्स में। अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप में मिक्स टीम कैटेगोरी में मॉरिशस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई, युगांडा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना होगा। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। यूईएफए नेशंस कप में फ्रांस ने बेल्जियम को हराया 1-0 से, इटली की भी जीत हुई। आज इंग्लैंड जाएगा चेक रिपब्लिक के मैदान में
और स्पेन वर्सेस क्रोएशिया। I'll catch you again very soon.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: क्या बात है भाई, जिसका इंतज़ार होता है सभी को, वो टाइम आ गया है। अब चलाते हैं हम उस दोस्त को लेकर आए हैं जिनका आज बर्थडे है और लोलो हाइपर की तरफ से उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। पर हमसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है। हेलो हेलो हेलो हेलो जी हेलो हेलो अरे क्यों नहीं ले रहे। हेलो जी हेलो हमें लगता है हमारे ये दोस्त भी कट कर गए फ़ोन, क्योंकि उनको पता होता है कि ये आवर पे हम लुलु हाइपर की तरफ से उनको गिफ्ट वाउचर देते हैं, बट उनको हमें कुछ बात करनी होती है, बट पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। हम तो इतना ही बोलेंगे, भाई आपको लुलु हाइपर की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर मिला था मिस्टर गोपाल और आपकी सिस्टर ने विश किया था और हम तो चाहते थे आपसे कुछ गप्पे शप्पे मारना, पर आपने फ़ोन क्यों रख दिया। कोई बात नहीं, चूँकि हमारी तरफ से बहुत बहुत विशेज़। आर एम टू रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है। इन्जॉय कीजिए अपना बर्थडे, और किसी और का भी बर्थडे है तो वो भी इंजॉय कीजिए।

0: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: RM2 Radio Mystique.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music.
5: कीमत 70.65 रुपया से बढ़ के 70.70 रुपया प्रति लीटर हो गल बा और डीजल के दाम 71.25 रुपया से बढ़ के 78.35 रुपया प्रति लीटर हो गल बा। ये फैसला काल होल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लेवल गल। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता के आश्वासन देवता की काल की समस्या के बाद आज स्थिति बेहतर करे खातिर जरूरी व्यवस्था करल गल बा। 50 नवा बस ड्राइवर और कंडक्टर NTC के कार्यबल में शामिल हो। SDC के राशन चावल के सप्लाई

के सुरक्षित बनाए खातिर वैकल्पिक इंतजाम तैयार करता कर संगे संगे दुकान में सीधा वितरण के भी मजबूत करल जाए। एकर अलावा बोर्ड के बैठक के बाद बहुत जल्द एगो फैसला निकले के उम्मीद बा। आज खाद्य पदार्थ के बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाता। हर बरिस दुनिया भर में बड़ा मात्रा में ऐसा खाई के चीज फेंकल जाला जो खाई के योग्य रहेला। सोशल मीडिया पर काल जारी एगो बयान में नाडेक अभिभावक लोग के भरोसा दिलैलक कि लड़का लोग के कैंडीज के लेके घबराए के जरूरत नहीं बा, खासकर आजसू के हाल या चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कनाबिनोइड छोला मिठाई उस सब कैंडीज से बिल्कुल अलग बा जो हमने के दुकान और सुपर मार्केट में बेचाल जाता। नाडेक स्पष्ट कर ले बा कि ई मामला गल बरिस हवाई अड्डा पर खाली एगो महिला यात्री के भीरी से करल गल जब्ती से जुड़ल बा। सांसद वेरोनिक लोय के पति गुलशन गोविंद के काल रिवियनवा के जिला अदालत में जमानत दे देवल गल। उकर पर गांजा उगा के आर्मिटाडन रखे के आरोप लगा रहल। अदालत मानेला कि भले ही संदिग्ध पश्चिमी तट के भीरी रहेला और कुछ स्कीपर्स के जानेला, पर उकर फरार हुई के खतरा पुलिस के खाली आशंका रहल। हालांकि उगर समुद्र तट से 200 मीटर के दायरा में जाए के अनुमति नहीं बा। गुलशन गोविंद फिलहाल हिरासत में ही रही, कहे कि उकर पर करीब 155 किलो गांजा आयात करे के साजिश के भी एगो अंतरिम आरोप बा। नाइट मार्केट जोन मौसमी दुकानदार लोग खातिर आयोजित करल जाला, साल के अंत में हुई होला त्योहार के देख के राजधानी के पूर्व देफोश गली में फिर से लगावल जाए। ये आयोजन 12 दिसंबर से आवत बरिस 4 जनवरी ले चली। एकर तैयारी अभी से शुरू हो गल बा और एकर से जुड़ल अलग अलग पक्ष के संगे बैठक और विचार विमर्श करल जाता। और दूसर देश के खबर में येमेन के सरकार और हुती विद्रोही लोग के बीच जारी घमासान लड़ाई के बुरा असर आम नागरिक लोग पर परता। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले बाकी अबलेक यमन में 180,000 से जस्ती जना विस्थापित हो गल हवन सा। 6 अगस्त से शुरू होल ई लड़ाई में अबलेक 4,481 जना के जान चल गल बा। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 9 मिनट हो चुके हैं और अब जरा आसमान का मूड भी जान लेते हैं। आज धूप हमारा साथ देगी, हवा ठंडी रहेगी या कहीं बारिश की तैयारी है, इसका पूरा हाल जान लेकर आई हैं गीता जी। गुड मॉर्निंग गीता जी, बताइए आज मौसम क्या कह रहा है।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ऑन इट टू स्विनर्स।
4: पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 5:53 पर सूरज निकला है और शाम 6:07 पर सूरज ढल जाएगा।

0: to Radio Musti.
1: Pajia Pandia.
2: Paneer Paneer.
1: No. Pajia Pandia.
2: Paneer Paneer.
1: No. Pandia.
2: Paneer.
1: Oui, sign Paneer. Pajia Pandia.
2: Paneer Paneer.
3: Découvrez la nouvelle gamme 100% veg de KFC avec le succulent paneer patty dans votre Boxmaster ou burger. Savourez toute la richesse du paneer, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur.
2: Paneer Paneer. KFC.
4: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लोजी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, गौजरों से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
5: You, qui l'a antenne de bien installée? Forget ça! Al port de l'abonnement Canal Plus, app only! Zéro l'antenne, zéro décodeur, zéro installation! Abonne-toi, download to app Canal Plus, extreme des suites! EasyNet, Premier League, film, série, Bollywood, Lotus Smart TV, smartphone, tablette, stream pour tout man! En plus, l'immense avec tout réseau internet! Canal Plus, app only, rendez-vous en Canal Plus Store et chez Mtel. Service accessible sur le site internet canalplus.com ou via l'application Canal+. Sous réserve de souscrire à une offre Canal+, soumise à conditions valables à Maurice. Voir conditions techniques d'accès sur canalplus.com.
6: Comme lever, les coups, kaya, kaya. Me prends un daï, me bois. Daï! Un tanitriment, c'est aillé. Pour mettre tous les coups, c'est aillé.
7: You play.
8: Un produit made in Maurice.
9: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर होए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहिए। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाए। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
10: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
11: रेडियो मस्ती।

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 23 मिनट हो चुके हैं और सब लोगों की रफ्तार तेज हो चुकी है। घर में जो लोग हैं वो सफाई वगैरह करना शुरू कर चुके हैं, सड़कों पे गाड़ियां शुरू हो चुकी हैं, ऑफिस के लिए भागम भाग चल रही है। पर हम आपको एक बोलेंगे, एक बात, एक छोटा सा मंत्र देते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, टीचर्स और प्रोफेसर हैं तो आज किसी बच्चे की ज़रूर तारीफ कीजिएगा। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपकी छोटी सी तारीफ उसका दिल बड़ा कर देगी और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। और ऑफिस वाले हैं तो काम के बीच थोड़ा सा ज़रूर हंसीए। और हमारे बॉसेस, आज एक वेल डन आपकी टीम के लिए, बस इतना सही करना है और देखिएगा आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा और दिन में पूरा दिन आपके आसपास सारे जने आके इतना ही कहेंगे, सर काम बड़ा अच्छा चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए जिंदगी को, खूबसूरत है ये गाना आप सबके लिए।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: Arts News.
1: Radio Musty in the mix.
2: स्पोर्ट्स की बात हो रही है, हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। स्पोर्ट्स के लिए तो भाई वो कहते हैं ना, मैं जान दे सकता हूँ, इतना प्यार करते हैं स्पोर्ट्स को। तो हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आपने बता तो दिया था कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पर फिर से एक बार फिर से हमें बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अरविंद।
3: Good morning, आपको. Good morning, RM2 listeners. Let's check out the latest from the sports world. FA Nations League के ग्रुप A1 में फ्रांस

कॉन्टैक्ट ओ रेंडेवू और इटली के स्क्वाड्रा अजूरा की ओर से बहुत दिनों बाद फोर्जा इटालिया। बेल्जियम के यहां जिनेदीन जिदान के ले ब्लू जीत पाए 1-0 से मैच के अंतिम मिनटों में माइकल ओलिजे का गोल, सुपर्ब लेट सोलो गोल रहा। किलियान एम्बापे इंजुरी के कारण नहीं था, ऐसे में फ्रांस के मुर्गों को बेल्जियम के तगड़े डिफेंस को पार करने में कठिनाई हुई। 2 जीतों के साथ फ्रांस ग्रुप A1 में आगे है। अगला मैच इस फ्राइडे को इस इटली के खिलाफ होगा। इटली में रोबेटो मांचिनी की वापसी और पहली जीत, पहले मैच में बेल्जियम के खिलाफ हार हुई थी, इटली की टीम हारी थी, पर इस बार एवे जाकर टर्की को पीटा 4-1 से। बास्टोनी फ्रेटेजी कायोदे फर्स्ट हाफ में स्कोर कर पाए, फिर सेकंड हाफ में एस्पोजिटो का गोल। स्क्वाड्रा अजूरा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था, मांसिनी को फिर से बुलाया गया। इस नेशंस लीग से इटली को बहुत उम्मीदें हैं। ग्रुप 2 में जॉर्जिया 0, यूक्रेन 0, आर्मेनिया 2, मोंटेनेग्रो 3, लात्विया 0, साइप्रस 0, नॉर्दर्न आयरलैंड और हंगेरी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। ग्रुप 4 में रोमेनिया 2, बोस्निया 4, स्वीडन 3, पोलैंड 1, ग्योकोरेस का एक गोल रहा स्वीडन के लिए। आज स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से, ये ग्रुप A1 में है, और चेक रिपब्लिक इंग्लैंड का स्वागत करेगा। पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने न्यू वेम्बली स्टेडियम में जाकर इंग्लैंड को हराया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद लाहौरा का पहला होम मैच होगा, जबकि चेक रिपब्लिक में इंग्लैंड को संभलना होगा। आज के अन्य फिक्स्चर्स, फिनलैंड बेलारूस, स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया नॉर्थ मैसिडोनिया, सान मारिनो अल्बेनिया, मोल्डोवा फारो आइलैंड्स, स्लोवेकिया कजाकिस्तान, बुल्गारिया एस्टोनिया और लुक्जमबर्ग आइसलैंड। आज के फ्रेंडली मैचों में ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के खिलाफ खेलेगा, रशिया ईरान। कल के फ्रेंडलीज में जापान ने वेनेजुएला को 2-1 से हराया और उरुग्वे की जीत 4-1 से साउथ कोरिया पर नूनेस का डबल रहा। काफ अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की बात करें, ग्रुप ई में कल इक्वाटोरियल गिनिया ने 1-0 से सियेरा लियोन को हराया, जिम्बाब्वे को हराया कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने 2-1 से। ग्रुप एफ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0, बुर्किना फासो 1, ग्रुप एच में ट्यूनिजिया 2, बोत्सवाना 2। आज ग्रुप ए में लेसोथो का मुकाबला मोरक्को से, गाबों खेलेगा निजर के खिलाफ। ग्रुप बी में सूडान वर्सेस इजिप्ट, मोहम्मद सलाह सूडान के खिलाफ नहीं खेलेगा क्योंकि वहां के मैदान में आर्टिफिशियल टर्फ है, ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहते अपने स्टार खिलाड़ी के साथ। ग्रुप सी में गाना गाम्बिया, सोमालिया आइवोरी कोस्ट, ग्रुप एफ में बेने मोरिटानिया, ग्रुप जी में कोमोरो आइलैंड्स नामीबिया, कोंगो कैमरून, ग्रुप एच में युगांडा वर्सेस लीबिया, ग्रुप आई में बुरुंडी अल्जीरिया, जाम्बिया टोगो, ग्रुप जे में इथियोपिया सेनेगल मोजाम्बिक सूडान, ग्रुप के में केप वर्दे रुआंडा लिबेरिया माली, ग्रुप एल में मादागास्कर तंजानिया, गिनिया बिसाओ नाइजीरिया। 15 अक्टूबर को फीफा काउंसिल की बैठक लगेगी और प्रेसिडेंट इन्फांटिनो फीफा के सदस्य देशों को ज्यादा पैसा देने के बारे में सोच रहा है। 211 मेंबर हैं, लगभग 4.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग कैश रिजर्व में से पैसे निकाले जाएंगे। मार्च 2027 में फीफा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इन्फांटिनो फिर से खड़ा होगा। नवंबर 2026 तक अन्य उम्मीदवारों के नाम भेजने होंगे। एशियन गेम्स की क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल नहीं खेला गया। जापान में बारिश के कारण मैच में एक भी गेंद खेला नहीं गया, मैच वॉश आउट, ऐसे में टीम इंडिया ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंची। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश और मलेशिया के बीच, इधर इंग्लैंड की ए टीम और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू, और इंडिया अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 में इंडिया की अंडर 19 टीम 430 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के 217 रनों के जवाब में। लक्ष्य राय चंदानी 210 पर नॉट आउट है। इधर बैडमिंटन में केप टाउन सीनियर इंटरनेशनल्स में मॉरिशस के लिए 8

0: मेडल सु सिंग स्टीलियो चेंग त्यान चोंग सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीत पाया फिर तिया चंग के साथ मेंस डबल में भी गोल्ड मेडल दो सिल्वर मेडल रहे एक अनिरुद्ध जगेसर फिर दूसरा हरिमन स्वतंत्रा तानन और अनिरुद्ध जगेसर डबल्स में अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप में मिक्स टीम कैटेगरी में मॉरिशस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई युगांडा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना होगा तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें यूईएफए नेशंस कप में फ्रांस ने बेल्जियम को हराया 1-0 से इटली की भी जीत हुई आज इंग्लैंड जाएगा चेक रिपब्लिक के मैदान में और स्पेन वर्सेस क्रोएशिया आई विल कैच यू अगेन वेरी सून टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती टेक केयर बाय बाय
1: थैंक यू अरविंद

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दलाई लामा से एक बात बहुत प्यारी कही थी उन्होंने, खुशी कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है, वो हमारे अपने कामों से आती है। इसलिए खुशी को केवल ढूंढिए मत, उसे अपने व्यवहार में बनाइए।

0: और सच बात भी यही है, खुशी के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतजार क्यों करना। किसी से प्यार से बात कर ली, किसी की मदद कर दी, या बस किसी को देखकर दिल से मुस्कुरा दिए, कई बार हमारी ये छोटी छोटी बातें पूरे दिन को खूबसूरत बना देती हैं।
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
2: Milo, libère ta force.
1: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi, je voulais juste faire du sport.
2: Milo, libère ta force.
1: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
2: Milo, libère ta force.
1: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
5: Radio Mastique, your number one Bollywood station.

0: देखो भाई, ये जो टिंग निंग निंग वाला म्यूजिक है ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप जहाँ पर भी हो, डांस जरूर करो, स्माइल जरूर करो। पर अगर आपके आसपास कहीं आपको दिखे ना स्टेयर्स है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके सामने स्टेयर्स भी दिख रही है और लिफ्ट भी दिख रही है, तो आपको लिफ्ट को कहना है बाय बाय और स्टेयर्स को बोलना है हाय हाय। क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा सा स्टेयर्स पे चलना, आपको पैरों को थोड़ी सी एक्सरसाइज मिलेगी, आपकी हैबिट बनेगी, और थोड़ा सा मौका मिल जाए ना तो थोड़ा सा बाहर धूप में एक हल्का सा राउंड, एक मिनट भी राउंड लोगे, थोड़े से अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन करोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे। और कई बार लगता है कि भी सारे बॉसेज पास हैं तो क्या सोचेंगे, नहीं कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है कि अगर आप एक मिनट के लिए कर रहे हैं ना तो ये उन्हीं के लिए ही बेनिफिट की बात है, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, थोड़ा मूव करेंगे। और अपनी चेयर पे सिर्फ बैठे मत रहो, थोड़ा सा वॉक करके वापस आओ, फिर थोड़ा सा जब ब्रेक मिले तो थोड़ा सा चाय वाय पानी पीते रहो, और उसके साथ बिल्कुल 100% फोकस रख के काम करना, आंखों को थोड़ी सी एक्सरसाइज देना। ये सारी चीजें छोटी होती हैं पर सच में बहुत बड़ी होती हैं। एंजॉय कीजिए अपने डे को और अपने गानों को। हम तो यही कहेंगे आपका दिन बहुत खूबसूरत चले।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: 8:54 हो चुके हैं दोस्तों, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, पर थोड़ी देर बाद आपको साथ मिलेगा विकास का, जो कि बहुत ही खास गाने लेकर आते हैं, स्पेशल गाने लेकर आते हैं। और कहते हैं ना, लेटेस्ट गप जब बात हो तो फिर विकास से बेहतर और कौन हो सकता है। तो चलिए जी, बस अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, दिल को हल्का रखिएगा और दिन को भी अपना बहुत ही अच्छा बनाइएगा। मेरी तरफ से बाय, और थोड़ी देर में विकास आपके साथ होंगे।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4. 30 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर गीता जी आ चुकी है। गीता जी, आपका स्वागत है।
3: नमस्कार सुमी, सभी को हमारा नमस्कार। पेट्रोल की कीमत

75 रुपये 65 सेंट से बढ़कर 77 रुपये 70 सेंट प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71 रुपये 25 सेंट से बढ़कर 78 रुपये 35 सेंट प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही है, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसा खाना फेंक दिया जाता है जो खाने योग्य होता है। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर आत्सू की हालिया चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं। नाडेक ने स्पष्ट किया है कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर केवल एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। नाइट मार्केट जो मौसमी दुकानदारों के लिए आयोजित किया जाता है, साल के अंत में होने वाले त्योहारों को देखते हुए राजधानी की पूर्व देफोर्श गली में फिर से लगाया जाएगा। ये आयोजन 12 दिसंबर से अगले साल 4 जनवरी तक चलेगा। इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं और इससे जुड़े अलग अलग पक्षों के साथ कई बैठकें और विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और विदेश खबरों में यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 1,80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news on MBC Play and MBC.mu. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 9:10 हो चुके हैं दोस्तों। अब जिसने सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं, जो जल्दी उठे थे,

सुबह 5 बजे या 4 बजे उनको तो हम कहेंगे थोड़ा सा आराम करो, 5-7 मिनट बैठो, थोड़ा सा कहते हैं कुछ पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है, दही खा लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग आवर के लिए। पर जिनका अभी काम शुरू हुआ है, जो सुबह 7 बजे उठे थे, 6 बजे उठे थे, उनके लिए तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सा काम करो। और जो अब तक ऑफिस में पहुँच चुके हैं, जिन्होंने जो अपने कस्टमर का वेट कर रहे हैं या जो अभी रास्ते में स्टिल जा रहे हैं, उनको कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा जाए, खूबसूरत जाए। और जब थोड़ा सा कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ऑफिस का, जब मेल्स देखते हैं, तो वो वाली स्ट्रेस मत लीजिएगा, बस बोलिएगा कि मैं एक एक करके सब निपटा दूंगा। और जैसे आप निपटाएंगे ना, आप देखना थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे के बाद आपको इतना रिलैक्स मिलेगा ना, जब आपने सिर्फ ब्रेन में सोचना है, चाहे आप करें किसी भी स्पीड से, ये आपको पता है कि क्योंकि बहुत सारे मेल्स लंबे चौड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे से शुरू कीजिएगा, फिर लंबों वालों का काम आएगा। तो चलिए जी, बहुत सारे गानों के साथ हम जुड़े हैं आपके साथ। अभी थोड़ी देर में आपके, पहले मैंने बोला था विकास आएंगे, उसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ नीलमणि आएंगे, क्योंकि देखिए ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो ऐसे ही बस एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए, थोड़ी सी मस्ती करते रहिए, थोड़ी सी बातें करते रहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इन्जॉय कीजिए इस गाने को। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, 9:17 हो चला है. And yes, the traffic is crazy. लेकिन अगर mood आपका hazy है, तो गानों से आपको ठीक किया जा सकता है. So let's dive right back with some groovy music. 12:00 तक इस नमनी जो साथ देने वाली है, आपकी RM2 Radio Musty पर some next गाना goes out to all of you जो भी connected है RM2 Radio Musty के साथ.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकी।
1: अगर तुम्हारी कहानी सच्ची भी है तो भी इसे सुनाने के लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना?
2: इसलिए कि आप तीनों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है।
3: एक कैबरे डांसर के इश्क में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका भूल गए हो।
4: और अगर मुझे लैला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाऊंगा। डैड,
2: नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार।
0: मंगलवार 29 सितंबर को NBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल आशना है। 1992 की ये मूवी शाहरुख खान और दिव्या भारती पर फिल्माई गई दिल आशना है।

0: वैसे भी टाइम धीमी धीमी नहीं बल्कि जल्दी ही बीता जा रहा है, तो फॉर नाउ चलिए जानते हैं कि आज के राशिफल में यानी कि होरोस्कोप में आपका लकी कलर नंबर कौन सा होगा।
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि,
0: आज ना एनर्जी फुल ऑन रहेगी। जो काम पोस्टपोन आप कर रहे थे उसे स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम है। किसी अपने से अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज थोड़ा स्लो थोड़ा स्टडी और बहुत हैप्पी। अपने लिए भी मी टाइम निकालेगा जरूर एंड एक छोटी सी चीज आपके मूड को इंस्टेंटली बेहतर कर सकता है। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर है। किसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन से नए आइडिया या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बस स्माइल के साथ बात करिए। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: वैसे दिल आज थोड़ा इमोशनल है लेकिन ब्यूटीफुली पॉजिटिव रहेगा। फैमिली या किसी क्लोज पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
0: आज तो स्पॉटलाइट आपकी है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस कर पाएंगे। बस एटीट्यूड नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा चार्म दिखाइए। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने का दिन है। एक पेंडिंग काम कंप्लीट होते ही आपको वो सैटिस्फाइंग फीलिंग मिलेगी कि फाइनली वो हो गया। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि,
0: आज ना बैलेंस बनाए रखे, काम भी मस्ती भी। किसी ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट या अनएक्सपेक्टेड मैसेज से स्माइल भी आ सकती है आपके चेहरे पर। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन स्ट्रांग है। दिल जो कह रहा है उसे इग्नोर मत करिए लेकिन डिसीजंस थोड़ा कॉल्मली शांति से लीजिए। एंड आज का मंत्र है लेस ओवर थिंकिंग मोर लिविंग। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
0: एडवेंचर मूड एक्टिवेटेड। आज कुछ नया ट्राई करने, नए लोगों से मिलने या सिंपली रूटीन से ब्रेक लेने का मन करेगा। सो गो फॉर इट। लकी कलर आपका है ऑरेंज और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मेहनत का रिजल्ट्स धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज खुद को थोड़ा क्रेडिट दीजिए, आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा अचीव कर चुके हो। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आइडियाज की बारिश हो सकती है। आज कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं तो लिख लीजिएगा। एक सिंपल आइडिया फ्यूचर में कुछ बड़ा बन सकता है। लकी कलर आज आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल बोल रहा है रिलैक्स, खुद पर अननेसेसरी प्रेशर मत दीजिए। म्यूजिक सुनिए, चाय लीजिए और थोड़ा मी टाइम एंजॉय करिए। गुड वाइब्स आपके रास्ते में आ रही है। लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 7।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे आपने कभी नोटिस किया है, हम खुशी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सोचते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो हो जाए, तब

0: खुश होंगे, लेकिन कभी कभी ना दोस्त, हैप्पीनेस इज सिंपली वो चाय का पहला सिप, आपका फेवरेट गाना, किसी अपने का मैसेज, या ट्रैफिक में ना वो अनएक्सपेक्टेड ग्रीन सिग्नल में जाए। तो आज एक सिंपल रूल रखते हैं, जो अच्छा है उसको नोटिस करते हैं एंड इस दिन को मनाते हैं, इस ट्यूजडे को मनाते हैं अमेजिंग साथ में आपके ही मस्ती मॉर्निंग में। नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं टू ऑल दोस जो भी काम पर जा रहे हैं, वो कोश टू यू।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे गीता जी नमस्कार.
5: नमस्कार नीलमणि. सभी को हमारा नमस्कार. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी लाई गई है. पेट्रोल 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है. कल मध्य रात्रि से नए दाम लागू किए गए हैं. ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच ईंधन की कीमतों की दोबारा समीक्षा की गई. सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर आंसू की हालिया चेतावनी के बाद. नाडेक के अनुसार कैनाबिनोइड्स वाली ये मिठाइयां उन कैंडीज से

0: बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपर मार्केटों में बेची जाती हैं। नाडक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों, उनके कारणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कार्डियोलॉजी दिवस विश्व हृदय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के रूप में जाना जाने वाला ये विश्व अभियान शिक्षा, सामुदायिक कार्यक्रमों और सक्रिय अभियानों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ये हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है क्योंकि हृदय रोग विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है, जिससे हर साल 17.9 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और विदेशी खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। श्रीमेमाश्रीन पाल्मा काथोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बकोरी, जो रामेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल बुधवार 30 सितंबर को दिन के 2 बजे उनके घर श्रीमेमाश्रीन पाल्मा काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसको थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में बोलो. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हेलो एंड वेलकम बैक मस्टी मॉर्निंग के सेकंड आवर में विद नर्मनी. तो कैसे हो आप? मैसेजेस के जरिए शेयर करना जरूर 5491294 पर. एंड लेट मी टेल यू कि इस आवर में बहुत कुछ होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड. यही आरम जो वरी मस्ती पर ही.
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ऐसे 10:18 हुए हैं एंड आपने कभी सोचा है दोस्त, जो खाना हम वेस्ट कर देते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है? आप सोचोगे कि नमनी क्या बोल रही है। एंड यस, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड एंड लॉस्ट एंड वेस्ट के बारे में, क्योंकि आज का दिन डेडिकेटेड है उसके नाम ही। एंड यस, हम अक्सर प्लेट में थोड़ा एक्स्ट्रा फूड ले लेते हैं, फ्रिज में फूड रख कर भूल जाते हैं, या सिर्फ इसलिए फूड थ्रो कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा ओवर हो गया है। लेकिन फूड वेस्ट सिर्फ फूड वेस्ट की नहीं होती है, इट ऑल्सो मीन्स वेस्टिंग वाटर, एनर्जी, मनी और हमारी फार्मर्स की जो मेहनत है। तो लाइफस्टाइल में हम क्या छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, उसके लिए मेरे पास टिप है। एंड टिप नंबर 1 है कि ऑलवेज प्लान बिफोर यू शॉप, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग से पहले फ्रिज चेक करना और जितना ज़रूरी है उतना ही बाय करें, तो ये सेव कर सकता है आपका टाइम और एनर्जी। तो गानों के बाद नमनी फिर से आएगी और टिप्स देने के लिए। फॉर नाउ नेक्स्ट गाना गली गली नेहा कक्कर रखी आवाज़ में आपकी ही मस्ती मॉर्निंग में।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: भविष्य खातिर हमनी लगे हमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए तब सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहिए। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाए हा। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
4: RM2
5: रेडियो मस्ती।

0: tips powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: वैसे जब आउटफिट थोड़ा बोरिंग लगे ना, एक फन एनिमेट ऐड करना पड़ता है. ब्राइट स्नीकर्स, फंकी सनग्लासेस, क्यूट सी बैग या फिर स्टेटमेंट ज्वेलरी, बस एक छोटी सी चीज पूरे लुक को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना सकती है. यू जस्ट नीड टू नो कि किच विच एक्सेसरी जाएगा उसके साथ. एंड वैसे फैशन का रूल सिंपल है, जो पहनो कॉन्फिडेंस के साथ पहनो और अपना वाइब रॉक करो. सो रॉक ऑन मेरे दोस्त.
0: Fashion Tips was powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, sir, that's it. 10:40 से होने को है एंड बात हो रही थी टिप्स के बारे में ऑन दिस इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस डे फूड लॉस्ट और वेस्टेज का एंड इट कंटिन्यूज एंड जब नंबर दो है टू ऑलवेज सर्व स्मार्ट प्लेट में ना हमारे प्लेट में हमेशा छोटी छोटी पोर्शंस ही लेने हैं अगर और भूख लगे तो यू कैन ऑलवेज ऐड मोर टेक मोर लेकिन हमेशा वेस्टेज करने से बचें वही आपको अवेयरनेस की प्रैक्टिस लग जाएगी फिर ना वो बिग हेलो करते हैं तो आरती जी जो साथ दे रहे हैं आरम जो वीडियो मस्ती का एंड ऑल्सो मैसेज आया है बदवा विदेशी जी का एंड वो कोई भी गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने लिए तो हो जाए आपके लिए गाना आप बस यही रहना है कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ इन योर मस्ती मॉर्निंग
1: यू आर लिसनिंग टू मस्ती मॉर्निंग्स स्टे ट्यून्ड स्टे मस्ती रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे बचे हुए चावल का क्या करना चाहिए? फ्राइड राइस मैम, अरे ये किसने बोला? टिप नंबर 3 है कि हमेशा अपने लेफ्ट ओवर से प्यार करो। बचे हुए राइस है, फ्राइड राइस बना लो। एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है आपके पास, सूप या सैंडविच में यूज कर लो। थोड़े ओवरराइप बनानाज हो गए, स्मूदी या फिर बनाना ब्रेड बना लो। खाने का वेस्टेज ऐसे कब लुप्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही लाइफ को ना हमेशा सस्टेनेबली जीना चाहिए, ताकि आप ना खुद को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट आवर में और भी टिप्स के साथ। फॉर नाउ इस आखिरी गाने को एंजॉय करते हैं जो कि सेकंड आवर में है। तो चलिए लेट्स गो, लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द म्यूजिक वर्ल्ड। You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन की 11 बजे है. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार.
4: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार. 1 अक्टूबर को चीन के गणराज्य की स्थापना के 77 साल पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर कल शाम इबन स्थित हेनेसी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया. समारोह में सांसदों, राजनयिकों और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया. इस मौके पर चीन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से ज्यादा पुराने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया गया. एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही है. साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है. अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो एसटीसी की हॉटलाइन 5944-3434 पर उपलब्ध रहेगी. ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी. इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है. सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, खासकर आत्सु की हालिया चेतावनी के बाद. नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं. नाडेक ने स्पष्ट किया कि ये मामला पिछले साल हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री के पास से की गई जब्ती से जुड़ा है. और विदेश खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं. हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया

0: हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। शिमेमाशिन पलमा काथोबोन में 74 साल के 74-year-old के श्री रामेश बगोरी, जो रामेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर शिमेमाशिन पलमा काथोबोन से उठाकर गांधी पलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On MBC Play and MBC.MU.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got.
3: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मोहित चौहान की आवाज में लाही आपके इस ट्यूसडे को दी बेस्ट बनाने के लिए अब जुड़ चुके हैं ऑफिशियली तीसरे यानी कि लास्ट आवर में ऑफ मस्ती मॉर्निंग जहां पर मस्ती तो जारी है और टिप्स भी है सो लेट्स डाइव राइट बैक 12 बजे तक नमनी यहीं पर है गुड वाइब्स के साथ

0: और हम जो वीडियो मस्ती पर ही
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And that was a signal song. अब ऐसे सिग्नल तो टाइम ने मुझे दिया है कि टिप्स कहाँ पर है. Well, यही पर है ना. टिप नंबर 4 तक पहुँचे हैं एंड वो है खाने को प्रॉपरली स्टोर करना. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सही तरीके में स्टोर करने से वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रह सकता है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है बेस्ट बिफोर और यूज़ बाई डेट्स को समझना हमें सीखना है, क्योंकि हर डेट का मीनिंग सेम नहीं होता है. तो इस इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फूड लॉस और वेस्ट का एक सिंपल प्रॉमिस करते हैं, जितना चाहिए उतना ही लेंगे, जो बचा है उसे क्रिएटिवली यूज करेंगे और फूड को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चेंजेस हमारे लाइफस्टाइल में वो बड़ा सा डिफरेंस कर सकता है. सो मिलेंगे फिर से इस छोटे से ब्रेक के बाद.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं. हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है. डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस. हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन. फोन नंबर 5799-3782. हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी.
3: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Le litre d'huile de soja Alpa à 67,95 € et les 3 kilos de lessive machine en poudre blanc et couleur à 159,95 €. De nombreuses offres vous attendent dans nos rayons. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio

0: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकी।
1: अगर तुम्हारी कहानी सच्ची भी है तो भी इसे सुनाने के लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना?
2: इसलिए कि आप तीनों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है।
3: एक कैबरे डांसर के इश्क में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका भूल गए हो।
4: अगर मुझे लैला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाऊंगा। डैड,
2: नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार।
0: मंगलवार 29 सितंबर को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल आशना है। 1992 की ये मूवी शाहरुख खान और दिव्या भारती पर फिल्माई गई दिल आशना है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: And yes, सभी के लिए एक आखिरी टिप कंसर्निंग जीरो फूड वेस्टेज. हर हफ्ते में ना आपको एक वीकली ईट मी फर्स्ट बॉक्स रखना है. अरे आपको खुद लिखना है ताकि यू रिमेम्बर कि आपने फ्रिज में क्या क्या रखा था. तो फ्रिज में एक स्मॉल सेक्शन बना देना जहां वो फूड्स रख सके आप जो जल्दी कंज्यूम करना है. एंड इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा क्योंकि उससे फूड वेस्टेज भी नहीं होगा और आप टाइम से आपको खुशी भी मिलेगी कि आपने कर लिया यार. आप फाइनली रिस्पॉन्सिबल हो गए और टाइम पर भी खाना खा रहे हैं और वेस्टेज भी जीरो है. तो और भी टिप्स के लिए आप यही पर रहना कि नेक्स्ट नैनवी के लिए नेक्स्ट गाना करते हैं. तो आवर फ्रेंड्स जो अभी कनेक्टेड है हमारे साथ, वी हैव यश, वी हैव अंसुयान, वी हैव रिया जो कनेक्टेड है. दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू.

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
3: And yes, another tip, and वो है कि घर को साफ, organized और smoothly चलाने के लिए रोजाना ना छोटी आदतें अडॉप्ट करना है वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे ही एक टिप है जिसका नाम है 10 मिनट इवनिंग रीसेट. सोने से पहले सोने से पहले पूरे घर में एक चक्कर लगाकर बिखरी हुई चीज़ों को उनकी जगह पर वापस रख दें. उससे आपका घर ना एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा और टेंशन भी नहीं होगा. अगर कोई बना बुलाए आ गया घर पे मॉर्निंग में तो बस 10 मिनट का रीसेट एंड यू डन.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: For now, Musty Morning में time हो चला है मेरी जाने का. And अगर आपको बाद में household tips, cleaning hacks या किसी और चीज में मदद चाहिए हो, Musty Morning में फिर से मिल सकते हैं कल same time at 9 AM. अभी के लिए इजाजत दीजिए. Have a great day with your RM2 Radio Musty.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: दिन के 12 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
5: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। 1 अक्टूबर को चीन की गणराज्य की स्थापना के 77 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कल शाम एबेन स्थित एनएससी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सांसद, राजनयिक और राजनीतिक हस्तियां उपस्थित थे। इस मौके पर चीन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से ज़्यादा पुराने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया गया। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही हैं, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो एसटीसी की हॉटलाइन 5944-3434 उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं। खासकर आतसू की हालिया चेतावनी के बाद नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयाँ उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जाती हैं।

0: रही हैं। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों, उनके कारणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कार्डियोलॉजी दिवस, विश्व हृदय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के रूप में जाने वाला ये वैश्विक अभियान शिक्षा, सामुदायिक कार्यक्रमों और सक्रिय अभियानों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है क्योंकि हृदय रोग विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है, जिससे हर साल 17.9 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और विदेशी खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। एवेन्यू ओलिये काथोबोन में 56 साल के 56-year-old के श्री जवाहरलाल जगिसर, जो संजय से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी गुरुवार को दिन के 1 बजे उनके घर एवेन्यू ओलिये काथोबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन ऑन थर्सडे एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On MBC Play and MBC.MU. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बस खत तो अभी लिखना नहीं है, मैसेजेस डेफिनेटली लिखने हैं आपको ऑन 5499 1294। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप? 12:08 हो रही है, सो स्वीकार करें नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम एवरीवन। ट्यूसडे आफ्टरनून 29th of September, बस कल ये महीना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप और हमारा साथ डेफिनेटली खत्म कभी नहीं होंगे। सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वर ट्यून, अभी से लेकर 2 बजे तक आपके मैसेजेस, आपके रिक्वेस्ट, आपकी फरमाइशों के साथ नीतू ऑन 5499 1294। तो बस खाते पीते रहिएगा क्योंकि इट्स लंच टाइम, बोना पीछे आप सभी को।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना,

0: इशारा तो बस एक ही है कि आपके मैसेजेस आपका इंतजार ऑन 5499 1294. थैंक यू सो मच. और ऐसे प्यारे प्यारे एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ आपका जब साथ मिलता है ना तो ये आफ्टरनून गुड से बेटर बेस्ट बन ही जाता है. 12:20. सो आज है मंगलवार 29th of September. जानना चाहेंगे कि आज रात एमबीसी टीवी पर कौन सी मूवी आप देख पाएंगे?
1: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकी.
2: अगर तुम्हारी कहानी सच्ची भी है तो भी इसे सुनाने के लिए तुमने हम तीनों को ही क्यों चुना?
3: इसलिए कि आप तीनों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है.
4: एक कैबरे डांसर के इश्क में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम अपने बाप से बात करने का तरीका भूल गए हो.
5: और अगर मुझे लैला नहीं मिली तो मैं जीने का तरीका भी भूल जाऊंगा. डैड,
6: नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार.
1: मंगलवार 29 सितंबर को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल आशना है. 1992 की ये मूवी शाहरुख खान और दिव्या भारती पर फिल्माई गई दिल आशना है.
0: इसमें सिर्फ शाहरुख खान एंड दिव्या भारती नजर नहीं आएंगे लेकिन हेमा मालिनी के बनाए हुए फिल्म है. प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय हेमा मालिनी. जी हाँ, इसमें जितेंद्र मिथुन, डिंपल कपाटिया, अमृता सिंह, सोनू वालिया सब नजर आएंगे. और कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. एक लड़की जो जानना चाहती है मेरी माँ कौन है,

बस इस मूवी को आप देखिएगा रात को, एंड डेफिनेटली ये डेब्यू मूवीज में से रही शाहरुख खान की, और द लेट दिव्या भारती भी नजर आई थी, आनंद मिलिंद का संगीत। तो फिल्म की बात चल पड़ी है, ये गाना तो आप सबके नाम।

0: बादल की बात ही ना करे, दो दिन पहले इतनी गर्मी थी, आज देखो ना ठंड की हल्की हवा कहाँ, तेज हवाएं बह रही है और ऐसा लग रहा है वापस सर्दी का मौसम आ गया है। जैसा भी हो हम तो आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
1: रेट्रो रिदम,
0: थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस, आपके प्यार के लिए और आपके साथ के लिए। कैसे हैं ललिता जी फ्रॉम लावोचो, आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए। एंड यहाँ पर रेशमा कहती है हाय नीतू गुड आफ्टरनून, अभी लंच ब्रेक है सो सभी दोस्तों के नाम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्या बात है, आम आम है पेड़ पर, अगर मिल जाए तो बताना जरूर हाँ, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं ये ही सबसे अच्छी बात है और जरूरी भी। सो 5499 1294 पर Waiting for you. और अभी जो गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली, ऑफकोर्स 1964 की क्लासिक मूवी जिसमें द ग्रेट लेट शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर नजर आए थे। एज वी ऑल नो 14 साल की उम्र थी और उन्होंने अपना डेब्यू किया हिंदी सिनेमा में और शंकर जयकिशन इस फिल्म को अपना संगीत देने वाले थे, लेकिन जो ओपन एयर साहब थे शक्ति सामंत उनके पास गए, देखा अब बोला देखो साहब हमारी जो चून्स है आप सुन लो ना, अगर अच्छा लगे तो आप देखना। तो 12 ट्रैक्स चूज किए गए, लेकिन जो ओपिनियर साहब थे उनके चुन्स इतने उनको पसंद आए शक्ति सामंत को, उन्होंने कहा चलिए इस मूवी को तो हम आपको ही देंगे और बन गए ब्लॉकबस्टर्स। ऐसे ब्लॉकबस्टर्स गाने ओनली फॉर यू। सो आप जहां भी हैं, व्हाटएवर यू मार्ट, भी घर पर, ऑफिस में, बाजार में, कहीं भी, रेडियो मस्ती आपके साथ।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: दीवाने तो हैं भाई, जरूर दीवाने हैं इन गानों के, इन गीतों के, इन मधुर स्वरों की। 12:43, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यार से साथ निभा रही हैं। तो ये गाना स्पेशली आपके नाम चलाती है मामा प्रेमिला, और ये है आपकी प्यारी बेटी विधि माँ आपके

परिवार के नाम, जन्म जन्म का साथ का पतो पता नहीं, लेकिन जितना भी हमको वक्त मिलता है, जितने भी समय आपके साथ बिताते हैं, बस यही वादा करते हैं प्यार से निभाएंगे ऐसे प्यारे प्यारे गीतों के नाम, स्पेशली आपके लिए ममा प्रेमिला।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: ये जो साथ है हमारा और आपका कभी पुराना नहीं होगा. बाय द वे एवरग्रीन सॉन्ग्स तो चला ही रही है, कुछ 90s आपके नाम भी. इच्छे अली कुमार सानू के फैंस खुश हो जाइए, आपको ले चलते हैं 90s की दुनिया में विद राम शस्त्र. ये गाना आपके नाम भाई महन और पालमा काथोबोन से आपके पूरे परिवार के लिए, सुरेखा फ्रॉम काथोकोको रामधन परिवार के लिए. हेलो, कैसी हैं प्यारी सी रेखा फ्रॉम पोंबोंज, फ्रेंड्स कल्याणी, इंदिरा, नौशीन, शालिनी अभी काम पर हैं, सो डेफिनेटली बो कुहाश. एंड हाय, हेलो, नमस्कार प्रकाशवती, आपके लिए आपके पूरे परिवार के नाम.

0: माने कि बस थोड़ी देर में 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। लेकिन इस आशिकी के आलम में भूल नहीं चाहते हैं कि आज द 29th of September मिस करते हैं आपको महमूद साहब।
1: रेट्रो रिदम।
0: जी हाँ, हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाकर हमेशा के लिए जो ऑडियंस है दर्शकों के दिल में बस ही जाते हैं। ऐसे ही एक अजीम फनकार थे महमूद साहब, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमेडी, जबरदस्त टाइमिंग, मासूमियत और लाजवाब एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे भुलाना बिल्कुल आसान नहीं है। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को बम्बई में हुआ था और वो मशहूर डांसर और फिल्म पर्सनालिटी मुमताज अली के बेटे थे और उनके सिनेमा उनके खून में था। लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए महमूद साहब ने अपनी मेहनत और हुनर का सहारा लिया। और भी बातें होंगी, डेफिनेटली बहुत सारे गाने हैं, तो 1 बजे के समाचारों के बाद डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी।
2: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
3: हमें काले हैं।

ताली ताक जमी ताक ताली ताक जमी ताक दाला आम को ताक जोगी ताक ताजी के ने ताक नाक ताक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताली जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जम तारी जग तारी ताक नाक ताक ताजी ने ताजी ने ताजी ने ताजी जम तारी जग तारी जाने जाने को

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Ek baja hai. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
4: नमस्कार एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का आज आधी रात से पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.35 रुपए प्रति लीटर हो गई है दोनों की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल प्राइस कमेटी के मुताबिक प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में 3.63 बिलियन रुपए का घाटा है बच्चों की ट्रॉफियों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं हादसों की हालिया चेतावनी के बाद नादक ने कर सोशल मीडिया पर जारी बयान में माता पिता को भरोसा दिलाया है नादक के मुताबिक गांजे से जुड़े पदार्थ वाली जिन ट्रॉफियों की बात हो रही है उनका हमारी दुकानों और सुपरमार्केट्स में बिकने वाली ट्रॉफियों से कोई संबंध नहीं है संस्था ने स्पष्ट किया है कि यह मामला पिछले साल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री से हुई जब्ती का है सांसद विनोद गोविंद के पति गुलशन गोविंद को गांजा की खेती पर की खेती और मेथाडोन रखने के अस्थायी आरोपों के में कल रिवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है अदालत के मुताबिक पश्चिमी तट के पास रहने और स्कीपर्स को जाने की संभावना के आधार पर उनके भागने का खतरा जताना पुलिस की केवल आशंका है हालांकि उन्हें समुद्र तट से 200 मीटर के भीतर जाने की इजाज़त नहीं होगी जमानत मिलने के बावजूद गुलशन गोविंद पुलिस हिरासत में है क्योंकि उन पर रिवेन्यू के करीब 155 किलो गांजा मंगवाने की साजिश का एक अलग अस्थायी आरोप है इसकी अनुमानित कीमत 23.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है सुनवाई के बाद उन्हें फिर से पुलिस सेल में भेज दिया गया उनके वकील रुबेन मुहंगा पिले ने साजिश का ये अस्थायी आरोप हटाने की मांग की है जिस पर अदालत 6 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाली है 1 अक्टूबर को चीनी गणराज्य की स्थापना के 77 वर्ष पूरे होंगे इस मौके पर कल शाम एबेन के हेनेसी पार्क होटल में आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया सांसदों राजनयिकों और राजनीतिक हस्तियों ने इस वर्षगांठ के साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से अधिक पुराने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया विदेश स्तर पर दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के एक पूर्वी इलाके से 3 और महिलाओं के शव बरामद किए गए इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में वहां मिले शवों की संख्या 12 हो गई है पुलिस के मुताबिक ताजा 3 शव शनिवार से सोमवार सुबह के बीच मिले 3 मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं और उनका दूसरी मौतों से कोई संबंध सामने नहीं आया है लेकिन पुलिस किसी सीरियल किलर की आशंका से इनकार नहीं कर रही है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर Trois boutiques triolées, 74 साल के 74 years old के राजेश्वर जुराई की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें राजेश के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज सपहर 3 बजे उनके बेटे नीतीश जुराई के मकान Trois boutiques triolées से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
5: on NBC Play.

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

Retro Rhythm. जीने का दिन हो बस मरने की बातें ना करें अभी तो जीने का टाइम आ गया है क्योंकि ये सिर्फ हर एवरग्रीन सॉन्ग साहब के साथ जो है थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए यस नीतू अभी भी आपके साथ है और थोड़ा सा वक्त आपके संग टिल 2 PM एंड नमस्कार अमरीका पुरुष राम आप हो फ्रॉम पोर्टवीस गाना आप कहती है प्लीज मेरी बहन मीला के नाम जो रहती है काथुबोन ओ आज 60 years की हो गई है तो प्यारी सी दीदी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आकाश एंड मनसुख फैमिली साथ दे रही है खास उर्वशी के नाम विश्नी जीजू विनेश नेफ्यू केहान नीस है नव्या और आपके दोस्त हैं युदीन दिशाल और सभी मनसुख परिवार के नाम और जितने भी लोग हमारे साथ जी रहे हैं इन गानों के जरिए जी रहे हैं उन्हीं यादों को ताज़ा कर रहे हैं तो चलिए मुकेश साहब की आवाज़ धर्म करम फिल्म से लिया गया

0: rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: वो तो नहीं हो सकता भाई, लेकिन हाँ आपके दिल में जरूर थोड़ी सी जगह ढूंढ सकते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। ये अगला गाना आपके नाम मेरे हबी सचिन बिच्चू और आप रहते हैं पुतगदो विलाज। किन की तरफ से आपके नाम माय डियर फ्रेंड, आपके पूरे परिवार के लिए। चलिए पौने दो बज चुके हैं, वापस आपको ले चलते हैं इन द 90s। ये है अभिजीत और साथ ना सरगम की आवाजों में जिगर फिल्म का गाना रिमेम्बर जिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें अजय देवगन नजर आए थे। तो दिस वन गोज आउट टू ऑल द फैंस ऑफ अजय देवगन।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: उस खत को आप अपने दिल के जरिए लिख दीजिएगा, हाँ दिल के पैमाने से लिख दीजिएगा। अभी के लिए तो इट्स टाइम टू से बाय बाय, अब मुलाकात होगी थर्सडे। यस, कल तो है वेंसडे, सो थर्सडे मॉर्निंग आपको जगाने आएंगे इन या राइज एंड शाइन। बस थोड़ी देर में इट्स गोना बी बॉम्बे टॉकीज। अपना ख्याल रखिएगा। 1:53 हो रहे हैं, 1 बजे के समाचारों के बाद डेफिनेटली प्यारी सी परी आपके साथ जुड़ जाएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।

0: Radio Musti. Feel the Musti.
1: RM2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 2 baje hai. सुनते देश विदेश की खबरें आपसे विधि मां नमस्कार आपको
6: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को नमस्कार हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम में नए बदलाव किए गए हैं अब इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल घर के पीछे में मिनी ग्रीन हाउसेस लगाना है सरकार ने नई हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए 2 मिलियन रुपये का बजट रखा है जो अक्टूबर से उपलब्ध होगी रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है ये 10% की वृद्धि को दर्शाता है पेट्रोलियम प्राइस कमेटी के अनुसार प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट 3.63 बिलियन रुपये के घाटे में है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी इस अवसर पर कल शाम एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया मॉरिशस और चीन के बीच 50 से अधिक वर्षों के राजनयिक और व्यावसायिक संबंधों का जश्न मनाने तथा इस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सांसद राजनयिक सदस्य और प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ एकत्र हुई थी और विदेश में नेपाल में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं नदियां उफान पर हैं और मनांग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 पर्वतारोहियों की भी दर्दनाक मौत हो गई है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई थोड़ी देर में शोक समाचार बुटिक ट्रियोले में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेश्वर जोराय जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज सुपहर तीन बजे उनके बेटे नीतीश जोराय के घर थ्वाबुचिक त्रियोले से उठाकर त्यामिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी क्रमशन टुडे 8:30 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है
7: Your news on MBC Play and MBC.MU. More music in the mix.
8: Aaj Azadi hai.
1: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, सुबह के नहीं बल्कि दोपहर के 2:06 और हम तो हमारा दिल जिनके पास छोड़कर आए थे उन्हीं से एक बार फिर मिलने आ गए हैं, यानी कि हमारे डियर लिसनर्स. सो वार्म वेलकम. 2:07 ट्यूसडे आफ्टरनून 29th of September, आपका स्वागत करते हैं आपके इस आफ्टरनून शो में जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज. आफ्टर सम ओल्डीज इट्स टाइम कि हम कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए लेकर आए, तभी तो हम कहते हैं बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आप तक पहुंचाते हैं. मॉर्निंग टू नाइट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सॉन्ग्स आप एंजॉय कर पाते हैं बिकॉज ये है रेडियो मस्ती. सो चलिए अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक बी टाउन की खबरें, आपके फेवरेट सेलेब्स से जुड़ी हुई कुछ खबरें एंड ऑफ कोर्स कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स होंगे आपके लिए. साथ देने के लिए शुक्रिया. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499129

0: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं, जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं, और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लोजी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, गौजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर। RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: एंड वेल फ्रेंड्स, कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आए हैं आफ्टरनून टाइम, जहां पर आपके मूड को हम सेट कर रहे हैं इन ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ। थोड़ी ही देर में आपके लिए बी टाउन की खबरें भी हम शेयर करेंगे। फॉर नाउ एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल द लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन।

0: சம்பந்தம்.
1: பாம்பே டாக்கீஸ் ரேடியோ மஸ்தி.
2: ரேடியோ மஸ்தி.
3: और चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर कुनाल खेमू और सोहा अली खान की. आज अपनी बेटी नाया नोमी खेमू का वो 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर कुनाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो शेयर किया. वीडियो काफ़ी क्यूट है. वीडियो को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कई सेलेब्स अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं. कुनाल खेमू ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है एक्टर एक सोफा पर बैठे हैं और गिटार बजा रहे हैं. वहीं गुम सुम ये निगाहें गाना वो गा रहे हैं. उनके साथ उनकी बेटी नाया नोमी खेमू भी है और अभिनेता जब गाना गा रहे हैं तो उनकी बेटी उनसे गले लग रही है और प्यार कर रही है. आखिर में ये अपनी बेटी के लिए एक सबसे स्वीट गिफ्ट है कुनाल खेमू का. और इसके ऊपर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सो पत्र लेखा यस उन्होंने लिखा है आई एम क्राइंग. सबा पटौदी जो सोहा अली खान की बहन है, सैफ अली खान की बहन है और बुआ है इनाया की, उन्होंने लिखा है हैप्पी 9th बर्थडे टू इनायन. साथ ही सोफी चौधरी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है हैप्पी हैप्पी प्रेशियस गर्ल. टीना पारेख जो टीवी की काफ़ी फेमस स्टार है, उन्होंने लिखा द स्वीटेस्ट थिंग इन लॉन्ग टाइम. सो वीडियो शेयर करते हुए कुनाल खेमू ने इसके कैप्शन में लिखा जन्मदिन मुबारक मेरी इनी बू. और वीडियो पर कई यूजर्स ने रिएक्शंस भी दिए हैं. सो यहाँ पर ये स्वीट वीडियो सामने आ रहा है और इसी वीडियो के साथ हम भी छोटी सी प्यारी सी नाया को विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे.
4: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याल ए दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विश्व सुंदरी यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपने शानदार अंदाज को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल एक्ट्रेस 20

साल शो की थीम वॉक योर वर्थ थी और आत्मविश्वास विविधता और महिलाओं की एकजुटता का जश्न मनाया गया। ब्यूटी ब्रांड के लंबे समय से ग्लोबल एम्बेसडर रही ऐश्वर्या ने लोरियल पेरिस के ले जिफेल के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया था, ये जो फैशन वीक रखा गया था उसका हिस्सा बनी और दैट वाज द 9th एडिशन जहां पर वो शामिल हुई। इस दौरान एक्ट्रेस शाही अंदाज में नजर आई। उन्होंने डिजाइनर यारा शूमेकर का बनाया हुआ शानदार ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था। अपने लुक को पूरा करने के लिए एक्ट्रेस ने बालों को कर्ल किया था और टियारा भी लगाया था। उन्होंने एकदम लाइट मेकअप किया हुआ था और ये जो ड्यूई मेकअप है उनकी स्किन पर बहुत अच्छा लग रहा था। रेड लिपस्टिक के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया और सभी उनके फैंस को अपना एक बार फिर कायल बना दिया। यहाँ पर बहुत सारे और इंटरनेशनल स्टार्स भी शामिल हुए और शाम का एक खास पल तब देखने को मिला जब ऐश्वर्या और सेलिन डियोन ने एक दूसरे का हाथ थामा और गर्म जोशी के साथ वो एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। इसके बाद दोनों ने स्टेज पर अचानक डांस भी किया। इवेंट से एक दिन पहले एक्ट्रेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आई थी और अब लोगों को पता चल गया कि वहां पर वो क्यों गई थी। शी वेंट फॉर दिस फैशन वीक और चलिए अभी के लिए तो यहाँ पर उनके फैन उनकी तस्वीरों और वीडियो को देखकर काफी हैप्पी फील कर रहे हैं और एक बार फिर उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

So that was from the film Cocktail 2 और चलिए अब हैवान फिल्म का ये गाना. एक्चुअली ये गाना थोड़ा डिफरेंट सा फील होता है. जैसे हमने कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने सैफ अली खान और अक्षय कुमार को एक साथ देखा और यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुखविंदर सिंह और शान को हमने साथ गाते हुए सुना. सो दैट वाज इन द फिल्म हैवान. बॉक्स ऑफिस पर नॉट दैट ग्रेट लेकिन दिस इज अ ब्यूटीफुल गाना. इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम.

0: Your number one Bollywood station.
1: एंड चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ नेक्स्ट आवर की ओर हम बढ़ रहे हैं. लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए लेकर आए हैं टू गेट यू इन योर ट्यूसडे मूड. 29th ऑफ सितंबर, द लास्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर, मेक इट स्पेशल. रेडियो मस्ती के साथ परी का साथ है दिन के 4 बजे तक.

0: into Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से. आपको नमस्कार.
3: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. प्रवीण जगनाथ आज सुबह एक बार फिर सीसीआईडी पहुंचे. पूर्व प्रधानमंत्री से मिसे मुस्तास कहे जाने वाले टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जानी है. 17 सितंबर को समन मिलने पर प्रवीण जगनाथ ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब न देना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस ने उनके उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संदेह के आधारों को साझा करने की मांग की गई थी. प्रवीण जगनाथ का ये तर्क था कि पुलिस ने उन तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है जिनके आधार पर वे अपने संदेह को पुख्ता कर रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे माइक ब्रास पर आज सुबह 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. ये सजा इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन की मैजिस्ट्रेट चित्रा सुबाघा पीले द्वारा सुनाई गई. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में उनकी संपत्ति और कई ऐसे सामानों की जांच की थी जिनके अवैध गतिविधियों से आने का संदेह था, जबकि उन्हें रेनियन टापू में ड्रग्स तस्करी के लिए दोषी ठहराया जा चुका था. हाउसहोल्ड गार्डनिंग स्कीम में नए बदलाव किए गए हैं. अब इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल घर के पीछे में मिनी ग्रीन हाउसेस लगाना है. सरकार ने नई हाउसहोल्ड गार्डनिंग स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए 2 मिलियन रुपए का बजट रखा है जो अक्टूबर से उपलब्ध होगी. और विदेश में थाईलैंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले बैंकॉक में 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
4: Your news on NBC Play and NBC.mu. More music in the mix.
5: आज आजादी है.
1: Bombay Talkies.
5: Radio Musty.
0: Radio Musty.

और चलिए दोस्तों यहां पर दीवाने इसी गाने के साथ वेलकम फ्रॉम द फिल्म वेलकम टू द जंगल इस गाने के साथ आपका भी हम वेलकम कर रहे हैं ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक मैं हूं परी आपके साथ बॉम्बे टॉकी सभी से लेकर दिन के 4 बजे तक रेडियो मस्ती योर नंबर 1 बॉलीवुड स्टेशन

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का. बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्मों के बीच कमाई को लेकर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर द वन ने सोमवार को नानी स्टार पैराडाइज को पीछे छोड़ते हुए अपनी पकड़ मजबूत की है. वहीं हनुमान अंश की कमाई 400 करोड़ के पार पहुंच गई है. इसके अलावा मिर्जापुर द मूवी और हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम इनको इसकी कमाई लगातार इसमें उतार चढ़ाव जारी है. और चलिए यहाँ पर बॉक्स ऑफिस का जो दबदबा है वो अभी भी बना हुआ है. सो जैसे हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म यहाँ पर रिलीज हुई है. द वन

0: सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया स्टारर द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमाई के मामले में फिल्म ने पहले सोमवार कुछ काफी खास कमाल नहीं दिखाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी ने चौथे दिन 5.25 करोड़ का बिजनेस किया है और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 38.85 करोड़ का हुआ है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म 50.35 करोड़ कमा चुकी है। पैराडाइज की कमाई की बात करें तो साउथ अभिनेता नानी की फिल्म है द पैराडाइज और इसको रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं। रिलीज के बाद पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई। इस मूवी ने बीते दिन सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया। रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म की कमाई 68.2% में उसकी गिरावट आई। इसी के साथ फिल्म की टोटल कमाई 97.10 करोड़ की हुई और वर्ल्ड वाइड नानी की मूवी की बात करें तो 144.85 करोड़ ये फिल्म कमा चुकी है, यानी कि अच्छा खासा कलेक्शन किया है। हनुमान अंश का दबदबा अभी भी कायम है। नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी को रिलीज हुए 53 डेज हो चुके हैं और अभी भी ये करोड़ों की कमाई कर रही है। सिर्फ 2 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 309 करोड़ यानी कि 309.38 करोड़ का टोटल बिजनेस कर चुकी है। सोमवार को भी फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए और खास बात यह है कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन 404.25 करोड़ रहा है। तो आपको बता दें दैट ये फिल्म तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अभी तक इसने पार कर लिए है 400 करोड़ और अभी भी इसकी कमाई जारी है और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये फिल्म दिन ब दिन और अच्छा कमाल कर रही है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Your number one Bollywood station.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: चलिए दोस्तों, इट्स 3:49 और आपके जो मैसेजेस डेडिकेशंस आए हैं ऑन 5499129 है, पढ़ने का टाइम आ गया है. सो थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया. और वेल, अभी के लिए तो रोजबेल से सतीश जी लिसनिंग टू रेडियो एंड इस वक्त आप अपना याद क्लीन कर रहे हैं एंड आफ्टर टी टाइम यू आर कनेक्टेड हमारे साथ. चलिए, सफाई करते हुए ही सही आपने हमारे साथ ट्यून इन किया है. और ये तो है कि जब रेडियो कंपेनियन होता है सो यू नेवर नो कि आपके जो काम है कितनी फटाफट हो जाते हैं. और ऐसे लगता है कि आप अकेले भी नहीं थे और साथ साथ काम भी होता गया और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता गया. सो थैंक यू सो मच सतीश जी. आई डू होप दैट आपका याद अब क्लीन हो चुका है एंड इस वक्त आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं. एक और चाय की चुस्की ले लीजिए और अगला गाना इसे डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर यू. कहते हैं, कैन यू प्लीज डेडिकेट अगला गाना एंड विश सन निवेश गुड लक फॉर हिज HSC एग्जाम्स. उनके लिए भी गुडी गुड विशेज. ये है फ्रॉम अविशा. सभी बापू परिवार लेकर आए हैं उनकी गुड विशेज एंड हमारी ओर से भी ऑल द वेरी बेस्ट. विजया जी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं, हेलो परी जी, आप मुझे बस परी कहिए क्योंकि आप तो हमारी स्वीट स्वीट विजया है और हम तो बस यही चाहते हैं कि आप की जो स्माइल है, आपका जो प्यार है, वो ऐसे ही बना रहे. सो अगला गाना होगा आपके नाम और आपके लिए बहुत सारा प्यार. कहते हैं, हेलो लवली परी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. कहते हैं, अभी अभी आप घर पहुंची हैं, रेडियो ऑन किया है, चाय चढ़ाई है, गातो पीमा फ्राई कर रही हूँ और होम मेड गातो पीमा आप हमें भी ऑफर कर रही है. हाउ स्वीट. अब आप इतनी स्वीटली हमें ऑफर करेंगी तो हम कैसे मना कर सकते हैं. तो रोशनी जी, हमारी तरफ से दो गातो पीमा आप भी एंजॉय करें विद सम गर्मा गर्म चाय. थैंक यू सो मच.

रोशनी, लोड्स ऑफ लव टू यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. अब्दुल एंड सायरा बानू आप भी बने हैं हमारे म्यूजिकल हमसफर. सो अगला गाना होगा आपके नाम. वी ऑल्सो हैव वीना जगेसा ऑफ बेलवी मोएल. कहती है एक गाना हो जाए पूरे जगेसा परिवार के नाम एंड फॉर ऑल अजीतन परिवार और ऑल्सो फॉर रेडियो मस्ती टीम. थैंक यू जी. कहते हैं कि कल तक जिसे मेरी फिक्र होती थी आज उसे मेरी खामोशी भी नजर नहीं आती. सच में वक्त सब कुछ बदल देता है. ललिता जीतन, ये आया है मैसेज आपकी ओर से. लेकिन हमारा प्यार तो कल भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है और आने वाले कल में भी ऐसा ही रहेगा. मैं भी थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा. आई डू अंडरस्टैंड दैट्स लाइफ. और आजकल रिश्तों के मायने इतने ही रह गए हैं लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे लिसनर्स के साथ हम प्यार वाला जो रिश्ता है उसे हमेशा बरकरार रखें. सो वेल, अभी के लिए Right hug and loads of love to you and wishing you a wonderful time. Radio Masti ke saath. Avinash hamara saath de rahe hain. Kehti hain wife Natasha India se wapas aa rahi hain. Uske liye please ek gana chala dijiye. To chaliye yahan par unhe hum warm welcome karenge. India se aa rahi hain. So of course aapke liye lekar aa rahi hain bahut sari sweet sweet cheeze. Saath hi yahan par gana hamare sabhi doston ke naam Chand Anand Chingaru. Aur is waqt aap hamare saath connected hain aur kehte hain that yahan par ek loki mili hai aapko unki taraf se and it's very very sweet. Oh my god, that's so sweet. चलिए ऐसी ही स्वीट बातें आप हमसे शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है. अब नाम इसका बिटर गुड है लेकिन हम तो इसे हिंदी में लौकी कहते हैं. तो चलिए उम्मीद करते हैं दैट यू आर गोइंग टू मेक अ यमी लौकी की सब्जी और उसके साथ हम तो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे. ब्यूटीफुल गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे. एंड यहाँ पर आखिरी मैसेज दैट्स फ्रॉम संगीता और उनके परिवार के लिए. तो धन्यवाद तो हम आपको कहेंगे. थैंक यू जी, साथ देने के लिए शुक्रिया. एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना कमिंग अप फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. और चलिए दोस्तों इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. जा रहे हैं आपको छोड़े विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. आ रही है गिनिशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स और इसी गाने के साथ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रणबीर कपूर को जिन्होंने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. उनकी ब्यूटीफुल वाइफ आलिया भट्ट, उन्होंने भी कुछ स्वीट स्वीट तस्वीरें शेयर की, प्यारा सा पोस्ट शेयर किया एंड कुछ अनसीन तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की. सो बस इस वंडरफुल कपल को गुड विशेज. एंड ऑफकोर्स रणबीर कपूर, इंतजार रहेगा इनकी रामायण का जो रिलीज हो रही है दिस दिवाली. तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज. कुछ और प्यारे गाने, कुछ और बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए एंजॉय करिए खूबसूरत गाना. मुझे दीजिए इजाजत. तब तक के लिए यहाँ पर गानों का कारवां चलता रहेगा. मॉर्निंग हो या नाइट, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती.

0: Thank you so much for choosing Radio Masse as your radio partner. फिलहाल के लिए check your time. It's already 4 p.m.
1: RM2 Radio Masse.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti. The Masti. The Masti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ. नमस्कार.
5: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार. प्रवीण जगनाथ आज सुबह एक बार फिर से सीआईडी पहुंचे. पूर्व प्रधानमंत्री से मिसिय मुस्तास कहे जाने वाले टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई. 17 सितंबर को समन मिलने पर प्रवीण जगनाथ ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब न देना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस ने उनके उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संदेह के आधारों को साझा करने की मांग की गई थी. प्रवीण जगनाथ का ये तर्क था कि पुलिस ने उन

0: तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, जिनके आधार पर वे अपने संदेह को पुख्ता कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे माइक अब्बास पर आज 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सजा इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में की मजिस्ट्रेट चित्रा सुबाघा पीले द्वारा सुनाई गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उनकी संपत्ति और कई ऐसे सामानों की जांच की थी जिनके अवैध गतिविधियों से आने का संदेह था, जबकि उन्हें रेनियन टापू में ड्रग्स तस्करी के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी। इस अवसर पर कल शाम में बेन केहनेसी पॉक होटल में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया। और विदेश में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कई दिनों में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने कहा कि 3 दिनों की भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे 46 लोग घायल हो गए और 1,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: On NBC Play and NBC.mu. Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
3: वो नहीं आने वाली,
4: आने वाली,
3: वो बेवफा, शलावती,

0: म्यूजिक हो वही मस्ती हो, और म्यूजिक तो बनती है ना जहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने आ जाते हैं। सो रेडी हो जाओ एक ऐसी राइड के लिए जहाँ फिल्मी तड़का और क्रेजी एनर्जी और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। यस, कमिंग अप ऑन रेडियो मस्ती, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स जहाँ पे गिनिशा लेके जाती है ऑन द फिल्मी राइड्स। तो अपनी सीट बेल्ट बंद कर लीजिए, वॉल्यूम फुल ऑन कर लीजिए गाड़ी में, क्योंकि इस राइड में मिलेगा बॉलीवुड का स्वैग। फिल्मी बातें जरूर करेंगे और धमाकेदार म्यूजिक और रफ्तार वाली फुल ऑन एनर्जी, आपकी स्पोर्ट्स न्यूज, आपकी ट्रैफिक अपडेट्स, आपके फैशन टिप्स, एवरीथिंग जस्ट इन वन शो। तो ट्रैफिक हो या लॉन्ग ड्राइव मूड हो, वैसे ही बिल्कुल एकदम बढ़िया होना चाहिए। रफ्तार वाइब्स के साथ हर राइड बनेगी एकदम फिल्मी आज। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, आपका स्वागत है इस खूबसूरत से शो में। हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड।
1: You're listening to...

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 तो चलिए जो चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एक्जैक्टली 4:14 हो चुके हैं एंड यू आर लिसनिंग टू गिनी शो राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड यस जस्ट टू रिमाइंड यू आवर डियर लवली लिसनर्स दैट द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती बिल्कुल जी बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी काम से निकल चुके हैं ड्राइविंग बैक होम या गस हो सकते हैं कि बस में बैठे हो या हो सकते हैं ऑलरेडी कैचिंग अप द मेट्रो एंड लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट हम तो बस इतना कहेंगे कि रोड जो होते हैं लंबी होती हैं ट्रैफिक हैवी होती हैं एट दिस टाइम बट आपका पेशेंस उससे भी पावरफुल होना चाहिए तो इज जस्ट रिलैक्स एंड ड्राइव सेफली और अपने डेस्टिनेशन तक आप एक स्माइल के साथ पहुंच जाइए ताकि हम बस इतना जान सके कि जितने भी ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट हम लेकर आए हैं इट्स ब्रिंगिंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस सो जितने भी हमारे ड्राइवर साहब हैं जी हाँ ड्राइवर साहब हमेशा याद रखें कि स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफली घर पहुँचना लाइफ कोई रेस नहीं एक ब्यूटीफुल जर्नी है सो एन्जॉय द राइड एंड एन्जॉय द नेक्स्ट वन

0: क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अ पाइस गोविंदन और केजी क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932 एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरआर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड।
1: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तुहरा तुहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पराव के नवा सांस दे। तुहर भविष्य तुहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय। इमें नियम आशर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to Radio Masti.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
4: Radio Masti in the mix.
5: Well guys, check your time. It's a sharp 4:40. चलिए ये बॉलीवुड की गलियों से निकल के स्ट्रेट अवे ये ऑन द ग्राउंड विद यू हमारे ये जो स्पोर्ट्स गुरु हैं अरविंद जी. गुड आफ्टरनून.
6: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. वैसे प्रीमियर लीग अभी आराम पे है, लेकिन प्रीमियर लीग के इतिहास में बहुत कुछ हो रहा है. द बिगेस्ट डिसिप्लिनरी केस इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री. ये हम मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं. 115 चार्जेस. ये जो आउटकम होगा ये टॉप फ्लाइट फुटबॉल 2010 से लेकर अब तक इसे डिफाइन करेगा. और ये है मैनचेस्टर सिटी और प्रीमियर लीग के बीच. पिछले सप्ताह आपको याद होगा राउंड वन में प्रीमियर लीग को ने अपील वो अपील करने वाला था, मैनचेस्टर सिटी अभी तक नहीं किया. सो एक तो प्रीमियर लीग इंडिपेंडेंट पैनल ने सिटी को गिल्टी पाया मेजोरिटी ऑफ द 115 चार्जेस. अब पनिशमेंट क्या होगा, जो भी होगा सिटी तो अपील करेगा. एंड द काउस इज सेट टू कंटिन्यू. और ये 17 साल के इस स्ट्रेचिंग बैक तो बहुत कुछ होने वाला है. और शायद पॉइंट्स डिडक्शन, शायद टाइटल लिया जाएगा. जो भी हो, इट्स द टॉक ऑफ द टाउन स्पोर्ट्स की दुनिया में. इधर विल चेक UEFA नेशंस लीग में आज दो इंपॉर्टेंट मैच, दो नहीं बल्कि चार पांच, स्टार्टिंग विद ग्रुप ए जहां पर स्पेन वर्ल्ड चैंपियन स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से है. स्पेन जिसने इंग्लैंड के घर में घुसकर उसे हराया था, अब अपने मैदान में है. लाहौर जब से वर्ल्ड चैंपियन बना है पहली बार के लिए अपने होम मैदान में, और उसके सामने है क्रोएशिया. चेक रिपब्लिक इंग्लैंड का स्वागत करेगा. इंग्लैंड के लिए यहां पर संभलना जरूरी है क्योंकि स्पेन के खिलाफ हार हुई थी. फिर मोल्डोवा फारो आइलैंड्स, स्लोवेकिया कजाकिस्तान, फिर फिनलैंड बेलारूस, स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच हैं. स्लोवेनिया नॉर्थ मैसिडोनिया, सान मारिनो अल्बेनिया. बल्गेरिया का मुकाबला एस्टोनिया से, और लुक्जमबर्ग खेलेगा आइसलैंड के खिलाफ. इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच

0: भी खेले जा रहे हैं और आज कुछ समय पहले एक मैच पूरा हुआ जिसमें ब्राजील ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया। वादेरसन, राफीना, ब्रूनो गुमारेस और विनीसियस जूनियर इनके गोल रहे ब्राजील के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए चिरकाती और मेटकाल्फे का एक एक गोल। तो ब्राजील की टीम जीत गई ये फ्रेंडली मैच। आज एक दूसरा मैच है रशिया और ईरान के बीच। इधर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स आज अनेक मैच, लेसोथो, मोरक्को, गाबो, निजेर ग्रुप ए में, ग्रुप बी में साउथ सूडान, इजिप्ट, ग्रुप सी में गाना, गाम्बिया, सोमालिया, आइवरी कोस्ट, ग्रुप एफ में बेने, मोरिटानिया, ग्रुप जी में कोमोरो आइलैंड्स और नामीबिया के बीच मैच शुरू हो गया है। अभी 40 मिनट बाद स्कोर 0-0, कोंगो कैमरून, युगांडा लीबिया, बुरुंडी अल्जीरिया, जाम्बिया टोगो, ग्रुप जे में इथियोपिया सेनेगल, मोजाम्बिक सूडान, ग्रुप के में केप वर्डे रुआंडा, लिबेरिया माली, ग्रुप एल में मडागास्कर तंजानिया और गिनिया बिसाओ वर्सेस नाइजीरिया। तो ये सभी मैच आज खेले जाएंगे, कल सुबह इन सभी मैचों के नतीजे आपको देंगे। कल यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग के मैच रखे गए हैं, कुछ फ्रेंडली मैच भी होंगे और थर्सडे को फिर से यूईएफए नेशंस लीग के मैच, फ्राइडे को भी, तो सैटरडे तक ये चलता रहेगा। 3 हफ्तों की छुट्टियां भी प्रीमियर लीग में। बाकी खबरों में क्रिकेट के बारे में बात कर लें। कैन यू इमेजिन, एक टीम अभी तक बिना कोई मैच खेले दे आर इन द सेमीफाइनल, ये जापान में हो रहा है। अब इंडिया, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और पाकिस्तान, दे आर टॉप सीडेड टीम इस एशियन कप में, एशियन गेम्स में। तो जो बाकी टीम प्रीलिम्स खेलकर आए, एक मैच जीतकर द गेम टू द क्वार्टर फाइनल, चारों क्वार्टर फाइनल वॉश आउट, बारिश के कारण एक मैच भी नहीं खेला गया। और रूल ये कहता है कि अगर मैच वॉश आउट होता है सो जो टीम टॉप सीडेड है दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। ऐसे में इंडिया क्वालिफाई हैं फॉर द सेमीफाइनल, जिसमें उसका मुकाबला थर्सडे को होगा श्रीलंका से और पाकिस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। और जापान में अगर वहां पर बारिश फिर से हुई तो फिर से वही रूल, द टॉप सीडेड टीम विल प्रोसीड टू द फाइनल। और टॉप सीडेड टीम पाकिस्तान और इंडिया है सैटरडे को फाइनल। कहा जा रहा है मौसम ठीक हो जाएगा, कम से कम एक मैच खेले, अगर वहां पर भी वॉश आउट हो गया तो इंडिया एंड पाकिस्तान विल शेयर द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जिसने, जिसको जीता है भारतीय टीम ने, इट्स द वुमेन कैटेगरी जहां पर ये लोग चैंपियन बने थे। अभी देखना है कि ये लड़के क्या करने वाले हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ए 7 विकेट्स खोकर 282, और उधर अंडर 19 इंडिया 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 19, इंडिया 19 वन बाय 1 इनिंग्स एंड 48 रन्स। कैन यू इमेजिन, तो चाहे वो नौजवान हो चाहे वो सीनियर खिलाड़ी, दे आर डूइंग वेल फॉर द इंडियन टीम। लेट्स वेट एंड वॉच। इधर मॉरिशस की टीम जो भाग लेने गई थी इन द अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट, वहां से खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। दे आर कमिंग अप विद द ब्रॉन्ज मेडल, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाए, सो दैट मींस ये लोग ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं, उनको कंग्रेचुलेशंस कहेंगे। इधर मॉरिशस और श्रीलंका के बीच जो मैच होने वाला है, फ्रेंडली मैच 2 और 5 अक्टूबर को, इसमें 23 खिलाड़ियों को रखा गया है, 5 एक्सपर्ट्स यानी जो दूसरे देशों में खेलते हैं। तो 2 एंड 5 अक्टूबर को दो मैदान में री पेड्रो ने अपनी लिस्ट बना ली है। तो अब मंगलवार से यानी आज से स्टार्स ब्लोकेनो के लिए तैयारियां जारी हैं। लेट्स सी क्या होगा, आपको बताएंगे जरूर, चाहे वो लोकल स्पोर्ट्स हो या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। कल सुबह फिर मिलेंगे, टिल देन लीव यू इन द गुड हैंड्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: थैंक यू सो मच ब्रो,
0: बाय बाय।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

Such a beautiful track in the lovely voices of Sunidhi Chauhan and Ash King. Yes, Tiamo, yani ki I love you. Yes, agar kisi ne aapko abhi tak nahi kaha hai subah se, so just I want you to know that Kini loves you. Radio Masti, dil ki frequency. खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ना रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अरे ट्रैफिक में फंसे हो टेंशन नहीं लेने का हम हैं ना साथ देने के लिए आई एम प्लेइंग सच गुड एंड लवली म्यूजिक जस्ट टू ब्रिंग द गुड वाइब्स तो चलिए द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू मालिनी जी जो साथ दे रही है फ्रॉम मोसलमान सेंट एंड्रे बोलते हैं हम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और मस्ती कर रही है सबों को हाश टू यू एंड थैंक यू द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू स्वीटहार्ट

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: बिल्कुल जी, अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ हम अच्छे अच्छे फैशन टिप्स भी लेकर आते हैं इन योर रफ्तार वाइब्स। वेल, इफ यू लव वेयरिंग व्हाइट कलर, जस्ट टू रिमाइंड यू कि व्हाइट पहने और लुक को बनाइए एकदम क्लासी। व्हाइट आउटफिट के साथ गोल्ड या सिल्वर एक्सेसरीज बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगते हैं। डे लुक के लिए बेज, न्यूड या पेस्टल एक्सेसरीज ट्राई करें एंड व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स के साथ पेयर करें और सिंपल बट सुपर स्टाइलिश जरूर लगोगे। और ऑल व्हाइट लुक के साथ एक कलरफुल हैंडबैग या शूज एड आप कर सकते हैं, जस्ट टू पॉप अप अ लिटिल बिट द कलर जो लेयर है। और व्हाइट ड्रेस के साथ मिनिमल ज्वेलरी रखें फॉर अ शिक लुक। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाइट कपड़ों को क्लीन और वेल आयरन रखें क्योंकि ये नीटनेस ही व्हाइट आउटफिट के रियल ब्यूटी होती है।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

नमस्कार। 29 सितंबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1 अक्टूबर से चालकों को अपने फोन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक जुर्माना ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से 10% की बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर पेट्रोल अब 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी के बीच इलाके के दूसरे देशों की कीमतों की तुलना इस बुलेटिन में। वर्ल्ड हार्ट डे पर देश में जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए हैं। पॉम्पलोमिसिस के कार्डियक सेंटर में हर दिन करीब 150 मरीज पहुंचते हैं, जबकि दिल की सर्जरी और एंजियोग्राफी के लिए इंतजार की सूची घटी है। फोन रिकॉर्डिंग वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैरक्स पहुंचे। 2 घंटे से अधिक समय बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, नाकाबंदी और प्रतिबंधों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं।

पेश है अब समाचार विस्तार से। आज रात 12 बजे से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 8 नए कदम लागू होंगे। शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाने और किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए जाने वाले चालकों और मोटरसाइकिल चालकों को और अधिक दंडित किया जाएगा। रोड रेज के मामलों में भी सजाएं और

0: अधिक सख्त होंगी। डिजिटल लाइसेंस भी जल्द ही एक हकीकत बनेगा और 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा। साथ ही उन वाहनों को जब्त किया जाएगा जिनके चालक शराब और ड्रग्स के साथ पाए गए हैं। पोटली में परिवहन और आईसीटी मंत्रियों द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज इन पर अधिक जानकारियां दी गईं। आज सुबह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 10% बढ़ गई हैं। अब एक लीटर पेट्रोल 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। नए दामों को कल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम सामानों की लागत बढ़ रही है।
1: नए मूल्य मंगलवार से सभी पेट्रोल पंपों पर लागू हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल अब 78.35 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ये 10% की वृद्धि है जो चालकों को प्रभावित कर रही है। परिवहन का साधन
2: Parfois, le médecin a oublié l'essence. Voilà, c'est de travail, vous voulez, l'essence finie.
3: Vous pensez au budget pour impacter beaucoup?
2: Oui, vous pensez, oui.
4: C'est comme ça aujourd'hui, là, Maurice, pénin choix.
3: Vous comprenez les raisons?
4: Non. Aujourd'hui, de la guerre partout, mais bon. Les besoins montent à un moment, les montées, que du cas, faites vous faire. Normal.
5: Par jour, là, avec diesel, pas de commenter. Je peux déjà me mettre 4 000. Mais là, avec diesel une montée, nous avons besoin de mettre 4 500, 5 000. Si bah, là, tu fais, en fait, tu réduis la taxe à vélo, l'essence diesel, tu vas faire bon.
1: Cette année, le pétrole et le diesel qui kimato mais y est tissé par autre rien. Ce qui va jouer, international bazar mais pétrole et utpado qui kimato mais badlao. Petroleum pricing committee qui anusar, is bar in dono indhano qui kimato mais 18% qui vridhi honi chahe thi, lekin maujda niyamo qui anusar, keval 10% ही लागू किया गया है। ईंधन की कीमत तय करने वाली संरचना में लगभग 10 अलग अलग घटक शामिल हैं। इनमें सिर्फ मूल्य यानी उत्पाद की लागत, बीमा और माल ढुलाई, उत्पाद शुल्क, ओडीए के लिए योगदान, रोड्रिक्स के लिए परिवहन और भंडारण की लागत, भंडारण सुविधाओं के निर्माण का खर्च तथा घरेलू गैस, आटा और राशन चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। ईंधन पर लगाए जाने वाले करों की समीक्षा करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यापार मंत्री माइकल सिक्वियन ने कहा कि ऐसा निर्णय सब्सिडी वाले उत्पादों की कीमतों पर भी असर डाल सकता है।
6: Le 13 décembre 2024, le gouvernement Tshivini-Tshivin enlève 2 roupies par litre en ce qui concerne excise duty concernant le prix de l'essence. Mais valeur du jour, Mopédiaou, il paraît compliqué de faire beaucoup de simulations et malheureusement, il fait l'effet domino de plusieurs autres produits qui nous paient un subside. Par exemple, nous avons 7 roupies 20 d'irrigation, la farine et le gaz ménager LPG. Si 7 roupies 20 viennent zéro en termes de contribution, d'irrigation pour sortir 56 roupies pour un sac de 5 kg, il peut atteindre facilement 153 roupies. Au niveau gaz, il peut passer de 250 à plus que 500 roupies un bonbon de gaz. Et au niveau de la farine, il peut aussi augmenter 26 roupies pour un sac de 2,5 kg et il peut arriver au moins 65 roupies pour un sac de 2,5 kg.
1: Is sanshodhan ke baad price stabilization account jo petrol aur diesel ki khudra kimaton ko sthir rakhne ke liye zimmedar hain mein 3 billion 630 million rupaye ka ghata darj ho gaya hai।
0: पॉम्पलमुसस के कार्डियक सेंटर में यहाँ हर दिन करीब 150 मरीज पहुँचते हैं। रोज़ दिल की 5 खुली सर्जरी और 18 तक ऑनजोग्राफी की जाती हैं। इलाज की रफ्तार बढ़ने से इंतज़ार की सूची भी घटी है। ऑनजोग्राफी के लिए पहले 600 लोग इंतज़ार में थे, अब 100 से कम है। वहीं दिल की ओपन सर्जरी के लिए ये संख्या 180 से घटकर 60 रह गई है। इस केंद्र में हर उम्र के मरीज इलाज के लिए आते हैं। सिंचा मुत्तु करुणा लालू।
1: 14 महीने की आलिना पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर के बाल हृदय रोग विभाग में अपॉइंटमेंट पर आई हैं। उसकी एक सर्जरी के बाद अब वो जल्द होने वाली दूसरी सर्जरी का इंतजार कर रही हैं। उनके पिता ने कहा, पहली सर्जरी भारत में की थी, अब दूसरी

0: श्री मॉरिशस में उम्मीद है सब ठीक हो। कार्डियक सेंटर का ये विभाग 5 क्षेत्रीय अस्पतालों से आने वाले बच्चों का इलाज करता है। डॉक्टर सचिन रामधनी ने कहा, साल में करीब 30 की होल सर्जरी करते हैं, ये ओपन हार्ट नहीं है, करीब 20 ओपन हार्ट भी करते हैं। हृदय रोग की उम्र की सीमा नहीं, एक दिन के शिशु की भी सर्जरी की गई है। कार्डियक सेंटर में हर दिन 15 से 18 एंजियोग्राफी की जाती है। 29 वर्षीय यश ने बन कोरोनरी धमनियों के लिए 3 स्टेंट लगाए हैं। उसने कहा, पीठ दर्द से सब शुरू हुआ, उसके बाद छाती का दर्द। डॉक्टर शिवसागर रामबर ने कहा, एंजियोग्राफी करने पर हमने देखा कि 3 धमनियां बंद थी, युवा हैं, इसलिए स्टेंट लगाया गया, धमनी ठीक की गई। 2-3 बाद अन्य धमनियां देखी गई। पहले 60 से 65 साल के मरीज हुआ करते थे, लेकिन अब हृदय रोगी की उम्र कम सीन हुई है, 50, 55, अब 40 तक। सिगरेट आदि के सेवन से मामले बढ़े हैं। किसी भी सर्जरी से पहले इकोकार्डियोग्राफी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर खलील रामजान ने कहा, पहले इको करते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है, वाल्व की भी जांच की जाती है, कहीं कोई खराबी तो नहीं। यदि कोई वाल्व तंग हो तो स्टेंट नहीं लगाए जाते, ऑपरेशन करते हैं। कार्डियक सेंटर के 3 ऑपरेशन थिएटर पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हर दिन लगभग 5 ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, यानी साल में 900 से अधिक ऑपरेशन। डॉक्टर सुनील गणेश ने कहा, वेटिंग लिस्ट बहुत कम हुई है। 1 से 1.5 साल पहले 190 मरीज सर्जरी की प्रतीक्षा में थे, आज संख्या घटकर 60 हो गई है, यानी 15 से 3 हफ्ते के भीतर सर्जरी कर दी जाती है। प्रतीक्षा के दौरान उनकी डायबिटीज नियंत्रित किया जाता है, वजन घटाते हैं, स्मोकिंग से मना करते हैं। एंजियोग्राफी को लेकर भी काफ़ी तरक्की हुई है। 600 से 650 मरीज थे वेटिंग लिस्ट में, आज इस संख्या 100 से कम है। प्राइमरी PCI करते हैं, यानी दिल का दौरा पड़ने पर 2 घंटे के अंदर कार्डियक सेंटर में लाकर धमनी खोलते हैं और स्टेंट लगाया जाता है। ये एक अहम तकनीक है, हृदय को और नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
1: Très important, très intéressant, qui évite que muscle et là lient endommagé.
0: समय के साथ इस केंद्र ने नई चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरण हासिल किए हैं ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल की जा सके।
2: आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिवस के मौके पर मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग से जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। मॉरिशस टेलीकॉम की 3 शाखाओं में लोगों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी गई। अक्टूबर में ऐसे कार्यक्रम दूसरी कंपनियां में भी होंगे। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले पिंक अक्टूबर अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीमारियों से बचाव पर जोर दिया। उन्होंने देश के अस्पतालों के लिए भारतीय स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती का भी जिक्र किया। हर धड़कन जिंदगी के सफर में एक कदम और आगे, लेकिन जब दिल कोई चेतावनी दे तो उसे सुनना भी उतना ही जरूरी है। आज विश्व हृदय दिवस पर यही संदेश दिया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों से होती है। ऐसे में समय पर खतरा पहचानना बेहद जरूरी है। आस्था गोबिंद।
3: दिल दिन रात काम करता है, लेकिन उसकी बीमारी हमेशा अपना पता नहीं देती। कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इसलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे पर लोगों से अपनी सेहत पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक दिल और रक्त वाहिकाओं की बीमारियां दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। इनमें दिल का दौरा और दिमाग की नसों से जुड़ा आघात भी शामिल है। इस साल का संदेश है, डोंट मिस अ बीट, यानी बीमारी के संकेतों को अनदेखा न करें। सीने में दर्द या दबाव,

0: सांस लेने में तकलीफ या बांह, जबड़े और पीठ में दर्द दिल के दौरे के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण अचानक सामने आए तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है। इस महीने विशेषज्ञों ने दिल के दौरे की एक नई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी जारी की है। इसका एक मकसद महिलाओं में इसकी अलग अलग वजहों को बेहतर ढंग से पहचानना है। विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं में कई बार बीमारी की सही पहचान देर से होती है। दिल की देखभाल के लिए बड़े बदलाव का इंतजार जरूरी नहीं। रोज थोड़ा चलना, तम्बाकू से दूर रहना, खाने में नमक कम करना और समय समय पर ब्लड प्रेशर तथा खून में शक्कर की जांच कराना मदद कर सकता है। विश्व हृदय दिवस याद दिलाता है, दिल की हिफाजत किसी एक दिन का काम नहीं, उसकी देखभाल हर दिन करनी होती है।
1: फोन पर बातचीत सुनने वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैराक्स पहुंचे। दो घंटे से अधिक समय बाद वे अपने वकीलों के साथ बाहर आए। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे इस जांच में सहयोग नहीं करेंगे। यासिंदर महमूद, अदिति अवतार।
2: इस मंगलवार को लाइन बैराक्स में बुलाए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने से इनकार किया। उनकी कानूनी टीम के अनुसार पुलिस अभी भी उन तथ्यों और हालात का खुलासा करने से इनकार कर रही है जिनके आधार पर उन्हें शक है, और इसी वजह से प्रवीण जगनाथ ने उन्हें सहयोग देने से इनकार किया। ये समन प्रवीण जगनाथ को टेलीफोन रिकॉर्डिंग उपकरणों की गैरकानूनी खरीद की जांच के सिलसिले में भेजा गया था। उनके वकील राउफ बुलबुल कहते हैं,
3: La police pense exactement de qui a fait cette question, monsieur Jagnat. Qui est l'élément qui est là, qui prouvait, et dans sa reasonable suspicion, qu'il a commis une offense. Ça ne se peut pas dire ça.
4: La police disait de se communiquer qu'il ne donne pas d'informations pertinentes pour cette enquête-là à M. Jagnat.
3: Les PGL ne donnent pas d'informations pertinentes. La loi empêche moi pour me dire qui a une raison pertinente, qu'il a donné, qu'il n'a pas donné, et qui m'en exige, lui, pour donner moi. Mais ce qu'il nous capable de dire, la police est dans cette position qu'il prend. Nous ne pouvons exiger certains renseignements, nous ne pouvons exiger. Et nous avons certaines réponses que nous trouvons, nous ne sommes pas capables d'amener le concours plus que ça, ça l'enquête-là.
2: Pravin Jagnath ko, isi jaanj ke silsile mein baad mein fir se line barracks jana hoga. Pichli baar, saman milne par bhi unhone yehi rukh apnaya tha. Wahi police ka kehna tha ki unhein kathit apraad ke baare mein bata diya gaya tha.
1: चीन अगले 1 अक्टूबर को अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इसी मौके पर कल शाम बेन के हेनेसीपॉक होटल में समारोह आयोजित किया गया। सांसद, राजनयिक और राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल हुई। साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से भी पुराने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को याद किया गया। खिशन सिच्चा, अदिति अवतार।
2: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और कई अन्य महानुभाव शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा हुआ। इसके बाद मॉरिशस में चीनी राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग ने एक टोस्ट उठाया। अपने संदेश में चीनी राजदूत ने 1972 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से मॉरिशस और चीन के बीच बनी मजबूत मित्रता पर बल दिया।
5: Since the establishment of diplomatic relations,
2: उन्होंने कहा, 54 साल पहले कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होता गया है। चीन मॉरिशस के एक ही चीन के विजन के सिद्धांत को गहराई से सराहता है, और शागस द्वीप समूह की अखंडता तथा टेरिटोरियल संप्रभुता को लेकर चीन मॉरिशस के न्यायपूर्ण निश्चय का समर्थन भी करता है। चीन की वृहद मंडी मॉरिशस के निर्यात के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, तथा चीन अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए विजन 2050 के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। इस साल शुरू की गई 15वीं पंचवर्षीय योजना चीन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उच्च स्तरीय विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रही है। इसी संदर्भ में समारोह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चीन का नवाचार उजागर किया गया।

0: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद एक सवाल शायद आपके मन में भी होगा, हमारे पड़ोसी देशों में लोग कितना भुगतान करते हैं, क्या वहां ईंधन हमसे सस्ता है या महंगा। आइए इलाके के कुछ देशों में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम की तुलना करते हैं। अंजुराम गुलाम, अदिति अवतार।
1: पड़ोसी देश रेनियन को भी ईंधन के दामों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है और उनके यहाँ भी कीमतें बढ़ रही हैं। 1 सितंबर से वहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम 1.83 यूरो है, यानी हमारे लगभग 99 रुपए। कीमतों में लगभग हर महीने बदलाव लाए जा रहे हैं। डीजल का दाम अभी 1.68 यूरो है, यानी यहाँ का करीब 91 रुपए। इन दोनों का दाम पिछले अगस्त महीने से बढ़ा है। पेट्रोल के लिए 5 सेंट और डीजल के लिए 13 सेंट ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। रेनियन अपना ज्यादातर ईंधन सिंगापुर से मंगवाता है। उधर सेशल्स में भी हालात चिंताजनक हैं। 1 सितंबर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 24.68 सेशल्स रुपए, यानी लगभग 85 मॉरिशन रुपए हो गई है। डीजल का दाम वहां के 25.19 रुपए, यानी हमारे लगभग 87 रुपए पर है। परिणाम स्वरूप सेशल्स के लोगों को भी फिलिंग स्टेशन जाते हुए संघर्ष करने जैसा अनुभव हो रहा है। याद रहे कि सेशल्स के पास उसके अपने टैंकरों की फ्लीट है, हालांकि उसने ईंधन की आपूर्ति के लिए पिछले महीने स्विट्जरलैंड की टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग एसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर मायोत में लोगों की जेब पर भारी बोझ बना हुआ है और बजट बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। 1 सितंबर तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2.5 यूरो, यानी लगभग 111 रुपए थी, जबकि डीजल की कीमत 2 यूरो, यानी हमारे लगभग 108 रुपए थी। पिछले महीने वहां कीमतें और बढ़ी हैं। वहीं कोमोरो में 4 महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब वहां पेट्रोल की कीमत 725 कोमोरियन फ्रैंक प्रति लीटर, यानी लगभग 80 मॉरिशन रुपए, और डीजल की कीमत 630 कोमोरियन फ्रैंक, यानी लगभग 69 रुपए है। मडागास्कर की बात करें तो वहां हालात बहुत तनावपूर्ण है। ओमान से शिपमेंट में देरी के कारण 2 हफ्ते पहले वहां ईंधन लगभग खत्म ही हो गया था, जिसे इमरजेंसी योजना लागू करनी पड़ी। वहां 1 लीटर पेट्रोल 5,300 एरियरी और डीजल 4,860 एरियरी में बिकता है। ये पेट्रोल के लिए लगभग 57 मॉरिशन रुपए और डीजल के लिए 52 रुपए के बराबर हैं। ये कीमतें 5 सितंबर से लागू हैं। हालांकि इन आंकड़ों को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मडागास्कर में एक फुल टैंक लगभग 40 लीटर औसत सैलरी का लगभग 35% होता है, जो कि करीब 6,000 रुपए है। मॉरिशस में डीजल भरवाने का खर्च औसत वेतन का 6.84% होता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार ये वेतन 45,794 रुपए है। ये साफ नहीं है कि इससे जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा या नहीं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि ईंधन भरवाते हुए सिर्फ मॉरिशन ही नहीं बल्कि सभी परेशान हो रहे हैं।
0: और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है। चर्चा में जलमार्ग खोलने और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने का प्रस्ताव शामिल है, लेकिन समझौते की राह में अब भी बड़ी रुकावटें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के मुद्दे पर पहले ठोस प्रगति हो। वहीं प्रतिबंध हटाने का समय और दोनों में पहला कदम कौन उठाएगा, इस पर मतभेद बने हुए हैं। और अब चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और रह रह कर पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, धूप खिले रहेगी। इस बीच कुछ समय के लिए देश के पश्चिमी हिस्से में बादल घिर आएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज रात के दौरान दूर समंदर

समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। इस बीच धीरे धीरे समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्यास्त 6:07 पर, कल सूर्योदय 5:52 पर।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: ग्लेनपॉग वाकवा में 93 साल के 93 years old के जनाब मोहम्मद हनीफ एडू, जो मामूद हनीफ नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात सवा सात बजे उनकी बेटी रबैया करमताली के घर ग्लेनपॉग वाकवा से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ग्लेनपॉग की सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:15। शुमे मशीन पालमा का ट्रोबोन में 74 साल के 74 years old के श्री रमेश बकोरी, जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 उनके घर शुमे मशीन पालमा का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 321 एवेन्यू ओलिये का ट्रोबोन में 56 साल के 56 years old के श्री जवाहरलाल जगेसर, जो संजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी गुरुवार को दिन के एक बजे उनके घर नंबर 321 एवेन्यू एरिया का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1 PM। एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन में 58 साल के 58 years old के श्री सूर्य राव नाराजी, जो पुल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 उनके घर एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन से उठाकर खुद गौर पेतु की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड बोनाक्यो में 73 साल की 73 years old की श्रीमती सत्यावादी मोरी, पैदाइशी नाम से वातियों और जोशीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 उनके बेटे गानादा अजागेन मोरी के घर मिशन क्रॉस रोड बोनाक्यो से उठाकर बोनाक्यो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9। केटुलेन सेंट जूलियन विलेज में 76 साल की 76 years old की श्रीमती सुभावती एमराज, पैदाइशी नाम जी नारायण और जो सुभावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 उनके बेटे संजीव कुमार सिंह एमराज के घर केटुलेन सेंट जूलियन विलेज से उठाकर मिट्स इन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में 101 साल की 101 years old की श्रीमती पिचाई मर्डन, पैदाइशी नाम कौपेन और जो आकापाक्यों नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुपहर 3 उनके भतीजे सदायन अनात्रा के घर सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर बोबा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। पालमा जंक्शन बासन रोड का ट्रोबोन में 74 साल के 74 years old के श्री पतिदेव प्रसिद्ध, जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके घर पालमा जंक्शन बासन रोड का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 10 AM। डोडोलेन लातापी बोनाक्यो में 50 साल की 50 years old की श्रीमती आशा गंगादोस, पैदाइशी नाम गुंदोरी और जो आशा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 उनके पति श्री पृथ्वीराज गंगादोस के घर डोडोलेन लातापी बोनाक्यो से उठाकर बोनाक्यो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play.

0: Your number one Bollywood station.
1: बिल्कुल जी, ख्वाबों का सिलसिला के साथ साथ जो है गानों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मस्ती। 6:34 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। वेलकम ऑन बोर्ड इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स।

बिल्कुल जी, आप लोग तो हमारे दिल में बसते हो, तभी तो चुन चुन कर लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्यारे प्यारे ही नगमे जो सीधे जाके दिल पर ही लग जाए आप लोगों के। एंड हियर वी गो, 6:51 हो चुके हैं एंड ऑन 5491294 पर ऑफ कोर्स योर डेडिकेशन एंड द नेक्स्ट सॉन्ग जो हम लेकर आए हैं, हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू ललिता जीतन जी, जो थोड़ी देर पहले गाड़ी हो रही थी एंड वंडरफुल गाने सुन रहे थे। और अगला गाना श्याम जी और कुमार देवचंद जी के लिए डेडिकेट करना चाहेगी फ्रॉम पेरेबिया विद्या अपिगाडू जी, उनका जन्मदिन है। सो बेस्ट विशेस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू माय ब्यूटीफुल, आपके पापा सुदेश, हस्बैंड विक्रम और भाई वशिष्ठ की तरफ से और पूरे परिवार सिरतन एंड अपिगाडू परिवार की तरफ से। एंड हे जस्ट वाओ ये गाने, थैंक यू सो मच किनिशा, हे थैंक यू सो मच, और आप हो हमारी प्यार

प्रिय रोशनी जी जिन्होंने बड़े प्यार से ये मैसेज भेजा है हमारे लिए. कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. करिश्मा जी ये अगला गाना आपके लिए. एंड वी हैव पुरन मुक्षना सेलिब्रेटिंग हर 10th बर्थडे टुडे. सो हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द एंटायर फैमिली की तरफ से. एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. एंड चलिए जी ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती. आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट टाइम बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. और साथ साथ में टाटा बाय बाय कहना चाहूंगी क्योंकि अब हम जा रहे हैं. थोड़ी देर बाद आएगी हमारे प्यारी सी दिव्या जी साथ निभाने के लिए. कल फिर मिलेंगे सेम शो सेम टाइम यानी कि 4 से 7 ऑन रेडियो मस्ती इन योर रफ्तार वाइब्स.

0: मेरे हिसाब से व्हाट कुड बी बेटर देन हैविंग दिस सॉन्ग स्पेशली इस शो का पहला गाना. और यकीन मानिए जैसे ही ये म्यूजिक चल पड़ा गिनी को भी बहुत ही मजा आ गया और कहा वाह क्या बात है, ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां. और लिटरली वो बोलते बोलते गा भी रही थी. कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है जब खूबसूरत गाने चल जाते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. और आई एम वेरी श्योर कि आप भी अपने साइड से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. और कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो म्यूजिक स्टार्ट से ही आप सुनते हैं तो आप खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाते हैं. एंड कुछ गानों के साथ आपकी खूबसूरत यादें जुड़ी रहती हैं एंड आपको मौका मिल जाता है टू रिवाइव दिस ब्यूटीफुल एंड गोल्डन मेमोरीज. तो चलिए यहाँ पर हर एक गीत के साथ यादें जुड़ी होंगी और प्यार भी जुड़ा रहेगा. सो बहुत ही प्यार से आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, यू डूइंग गुड. हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और ट्रस्ट मी, जब आपके मैसेजेस आते हैं ना और आप डेडिकेशन से पहले और आप पूछते हैं कि आप कैसी हैं, आपने खाना खा लिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच, यू गाइज आर रियली वेरी स्पेशल टू अस एंड आप हैं तो हम हैं. और इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि शो में चार चांद लगाने के लिए आपके मैसेजेस की ज़रूरत तो है ही. तो चलिए डू लेट अस नो कि आप किस तरीके से अपने इस ट्यूजडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं ऑन 5499-1294. इसके अलावा अगर आप हमारे गीतों को सुनते सुनते आपको किसी की याद आ रही है तो ये भी बता दीजिए कि आप किसको याद कर रहे हैं. तो चलिए प्यार से हम लेकर आए हैं ये म्यूजिकल जर्नी टिल 9 PM.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चेयर एज यूजुअल, अगर आप लोग इस वक्त अपना डिनर अपना मील ले रहे हैं तो आपको विश करेंगे बन अपेची शुभाहार। 7:17 हो चुके हैं। दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज। ड्रॉप इन योर मैसेजेस ऑन 5499 1294। जरूर जाना चाहते हैं एक बार फिर से कि आप किस तरीके से अपने ट्यूजडे इवनिंग को स्पेंड कर रही हैं, जरूर हमें बताइएगा। एंड अगर आप लोग इस वक्त घर वापस जा रहे हैं तो खिड़की को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ठंडी ठंडी हवाओं को बस अपने चेहरे पर आने दीजिए एंड जस्ट ट्राई टू फील द लव and vibe with the song.

क्या कभी आपने भी सोचा है कि प्यार के लिए लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है? एंड आई जस्ट होप कि जो भी आप एफर्ट डालते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको आपकी एफर्ट नज़र आए एंड बस आपको भी वो

0: आपके हक का प्यार जरूर मिले। चलिए 7:28 हो चुकी है, दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहाँ पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज। वैसे कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है, और बस यही चाहते हैं कि जो भी आपकी किस्मत में है, आपके वक्त में है, उसको आप अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं ना यू द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आप लक पर 100% बिलीव करेंगे तो बैठ के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये हम लिए बोल रहे हैं टू ऑल दोज जो शायद नाइट शिफ्ट कर रहे हैं अभी के लिए। आई नो रात भर काम करना इजी बिल्कुल नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि आपकी ये मेहनत आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। एंड आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही गुड म्यूजिक के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे गाने कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 24 आवर्स यहाँ पर नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए गाने चलते रहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, और हमारी प्यारी अनीता जी ऑफ लाक कहती हैं, हाय दिव्या जी, आप कैसे हैं? बहुत प्यारे गाने चल रहे हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच अनीता जी। नेक्स्ट गाना आपके सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, और सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए। एंड सिर्फ तुम का गाना एक मुलाकात जरूरी है। अभी के लिए रिक्वेस्ट के गाने तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट हम ट्राई करते हैं। एंड ये गाना जाएगा स्पेशली आपके लिए अनीता जी, आप फ्लिक ऑफ लाक से। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम, कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, सो थैंक यू। यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग खुल कभी फ्रॉम द मूवी हैदर। ये गाना हम सुनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे फिट्स आवर शो। एंड अनीता जी, आपका गाना तो हमारे शो में फिट होता है ज़रूर, लेकिन ये गाना तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम चलाने की कोशिश तो करते हैं ही, बट चलिए हम ट्राई करते हैं एक बार फिर से इस गाने को चलाने के लिए। सो थैंक यू टू ऑल दोज जो टाइम निकाल कर हमें याद कर रहे हैं। एंड एक बार फिर से कुछ खूबसूरत गानों का कारवां चल पड़ा।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: अभी हम क्या कहें, सो मिरर्स लाई, ये सच बात है कि झूठ बात है, ये तो एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग हमें बता पाएंगे। तो ज़रूर आप हमें बताइएगा कि इसमें आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आपको लगता है सच में कि आईना झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। वेल, चलिए 7:45 हो चुके हैं, कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। वेरी नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू। कैन यू प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली फॉर माई वाइफ, एंड वाइफ का नाम तो आपने बताया नहीं, बट थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। अगर आप बाद में अपना नाम भी जोड़ पाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हाय दिव्या जी, बढ़िया सिलेक्शन, नाइस रोमांटिक सॉन्ग्स। प्रकाशवती जी, हाय, कनेक्टेड विद अस एंड हैव अ ग्रेट लिसनिंग, एंड उम्मीद करते हैं हर एक गीत को आप ज़रूर एंजॉय करने के साथ साथ इसको महसूस भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना गुज़ आउट फॉर योर स्वीट फैमिली, स्पेशली फॉर योर परी बेबी रिया फ्रॉम विशाल। कीप अप द ग्रेट शो, थैंक यू सो मच विशाल। आपने दो गाने यहाँ पर मांगे हैं, पहला वाला तो आई गेस इट्स अ वेरी पैपी वन, हम नहीं चला पाएंगे अल्लाह के लिए। दूसरा वाला इट्स अ बिट रोमांटिक वन, हम ट्राई करते हैं टू फिट इट इन आवर शो, हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना स्पेशली टू ऑल दोज जो इस वक्त खाना खा लेने के बाद भी चिल करके हमारे गीतों को सुन रहे हैं। और कभी कभी अच्छा लगता है ना कि आप बस रिलैक्स करें, आंखें बंद करके ऐसा लगे कि आप बस दुनिया को साइलेंट मोड पे रख के बस इन गीतों को खूबसूरत तरीके से एहसास महसूस करते जाए। तो चलिए आई जस्ट होप कि आप अपने अंदर के शोर को भी साइलेंट मोड पर लगा पा रहे हैं, और जस्ट ट्राई नॉट टू थिंक, नॉट टू ओवरथिंक, बस आप हैं, हम हैं, ये खूबसूरत गाने हैं और ये खूबसूरत सा माहौल है।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: जी दोस्तों, प्यार का नशा तो छा ही रहा है और जब प्यार का नशा सर चढ़ के बोलता है तो धरने का नाम नहीं लेता है और बस कुछ ऐसा ही करने का इरादा है जहां पर आप बस प्यार ही प्यार को महसूस करें। चलिए यहां पर अगला गाना हम दरकेज करेंगे स्पेशली फॉर बिंदिया एंड योर हस्बैंड सोना फ्रॉम मिलजान गुडलैंड्स। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो फ्रॉम द मूवी बलमा, क्या बात है, सच ए ब्यूटीफुल गाना। हाई गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, मोटो डेडिकेट द नेक्स्ट गाना सियारा फॉर रानी श्वेता हुकुम अबुना कर फ्रॉम हबी रोशन। जस्ट वॉन्ट टू that I love her so so much. And साथ में we have Yogesh from Trois Boutiques Triolet. You want to dedicate a beautiful gana for wife Sia, only for her. I love her so much. And आपने कहा God bless you, thank you so much Yogesh ji, and God bless you too. And बस आपकी और Sia की जोड़ी हमेशा सलामत रही और आपका प्यार भी ऐसे ही बना रही है। तो चलिए दिव्या का साथ है on the waves of Radio Masti, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि ये musical journey हम जारी रखेंगे till 9 p.m.
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musty.

शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, शायद बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि प्यार होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा और किसके साथ होगा, बस हो ही जाता है।

0: वेल रात्रि की 8:26 हो चुकी है. यू आर कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है. टिल 9 PM चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज. ड्रॉप इन योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. चलिए यहां पर यही गाना हम खास तौर से डेडिकेट कर रहे हैं टू लव सत्यम हरगोबिन लिसनिंग फ्रॉम UK, और उनका प्यार उनको बहुत ही याद कर रहा है अभी. एंड आप कहते हैं कि मिसिंग हिम अ लॉट एंड ए हु इज़ इन मॉरिशस, तो चलिए आपने अपना नाम डिस्क्रीट रखा है, कोई बात नहीं. एंड वी हैव द नेक्स्ट गाना डेडिकेटेड स्पेशली फॉर गीता सीता भोलूराम फ्रॉम शातो बनारस, और साथ में द नेक्स्ट गाना गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद अस.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: प्यार में कोई बेखबर होता है लेकिन बेकदर कभी नहीं होता है, क्योंकि प्यार में कदर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये आपको ज़्यादा एहसास दिलाता है कि प्यार में अगर आप प्यार की कदर ना करें तो प्यार धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है और आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाता है। इसलिए नेवर एवर टेक समवन जो आपसे प्यार करता हो, नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड जस्ट ट्रस्ट इन द परफेक्ट टाइमिंग एंड साथ में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट डालिएगा टू मेक देम रियलाइज़ कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना स्पेशल है। और हम अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर ही रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि आप हमारे लिए कितना स्पेशल है बाय Making you listen to these beautiful, wonderful गाने। और चलिए हमारी गीतों को आप सुनिए एंड कीप enjoying टिल 9 पीएम जहाँ पर चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज।
1: इवनिंग लाउंज
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. वेल फ्रेंड्स, 8:55 हो चुके हैं और चलिए इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द कल सेम टाइम 7 to 9 PM के बीच. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत एंड कीप एंजॉयिंग द लवली सॉन्ग्स ऑन द वेव्स ऑफ RM2. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है लेट नाइट ग्रूव्स। जी हाँ दोस्त, रात का सुकून, हल्की सी ठंडी हवा और बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना, इससे बेटर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बस थोड़ा सा वक्त खुद के नाम कर दीजिए, क्योंकि दिन भर सबका ख्याल रखते रखते हम कभी कभी खुद को भूल ही जाते हैं। तो टुनाइट जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ एंड लेट द म्यूजिक टेक ओवर। यू आर लिसनिंग टू योर लेट नाइट ग्रूव्स विद मी आरजे गिनिशा ऑन रेडियो मस्ती।

वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, खूबसूरत गीतों का सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। चंचन कर लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे दिल को छू जाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सुनते ही किसी की याद बड़ी जोरों से आने लग जाती है, और कभी कभी वो गाना हमें खींच के लेके जाते हैं उन वादियों में जहाँ पे हम अपने खूबसूरत खूबसूरत यादों को सजा के रखते हैं। तो चलिए, हम तो चाहते हैं कि बस आराम से आप बैठ जाइए और अगले नगमे को आराम से दिल से सुनिए। ये अगला गाना खासकर आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: कभी कभी एक रोमांटिक गाना वो कह देते हैं जो हम खुद वर्ड्स में कह नहीं पाते, इसलिए अगर आज दिल में कोई है तो शायद ये नेक्स्ट सॉन्ग उसके लिए परफेक्ट मैसेज होगा, और अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी होता है। तो स्टे विद मी, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंजॉय द म्यूजिक एंड लेट द नाइट ग्रूव ब्यूटिफुली, स्पेशली मेरे साथ, किनिशा के साथ। तो चलिए ये अगला नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

So, my beautiful listeners, दिन कैसा भी रहा हो, रात हमें एक fresh beginning का chance देती है। जो हुआ, उसे जाने दीजिए। जो कल होगा, वो कल देखेंगे। आज बस music सुनिए, थोड़ा smile कीजिए और अपने दिल को थोड़ा सा सुकून दीजिए। Romantic melodies के साथ मैं हूँ आपका साथ देने के लिए in your late night grooves on Radio Masti।

वैसे दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि रात में गाने कुछ ज्यादा ही दिल के करीब लगने लग जाते हैं शायद इसलिए क्योंकि दिन का शोर खत्म हो जाता है और हम फाइनली अपने फीलिंग्स को सुन पाते हैं तो जो भी फील आप कर रहे हो फील कीजिए हैप्पीनेस हो नॉस्टैल्जिया हो या थोड़ी सी लव वाली फीलिंग लेट द म्यूजिक स्पीक टुनाइट क्योंकि आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स हां जी ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मस्ती

ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है बिल्कुल दोस्त और किसी स्पेशल पर्सन की याद भी तो आ रही है तो उन्हें मैसेज करने से पहले एक ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेट कर लीजिए उनके लिए जैसे कि ये अगला गाना हम आपके स्पेशल पर्सन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे कभी कभी एक सॉन्ग का आई मिस यू हजार वर्ड से ज्यादा कह देता है आज की रात इमोशंस को थोड़ा म्यूजिक के हवाले कर देते हैं सो कीप ऑन लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती

प्यार प्यार सिर्फ किसी एक इंसान के साथ होने का नाम नहीं है प्यार वो फीलिंग है जो लाइफ को ब्यूटीफुल बना देती है अपने फैमिली से फ्रेंड्स से किसी स्पेशल पर्सन से और सबसे इम्पोर्टेंट खुद से प्यार कीजिए टुनाइट लेट्स सेलिब्रेट ऑल दोस सेलिब्रेटिंग दीज ब्यूटीफुल फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक दिस इज योर लेट नाइट ग्रूव्स जो रात को हम आ जाते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए हाँ जी अगला गाना आपके और आपके उस खास फीलिंग्स के नाम

ये तो मेरी ही स्टोरी है, कभी आपके साथ भी हुआ है ना, एक मेलोडी, एक लिरिक्स या और सडनली किसी एक पर्सन का फेस आंखों के सामने आ जाता है। तो अगर आज ऐसा ही कोई गाना आपको किसी की याद दिलाए तो स्माइल कीजिए, बिकॉज सम मेमोरीज आर मेंट टू बी चेरिश्ड। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं। और फिलहाल के लिए जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, वो ट्रूली मैडली डीपली इन लव, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: से उन्हें आप दिल से एंजॉय कीजिए. एक कप चाय, फेवरेट पर्सन, फेवरेट म्यूजिक, समटाइम्स दैट्स इनफ, है ना. तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए और एंजॉय दिस ब्यूटीफुल नाइट विद मी आरजे की निशा ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स.
1: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड. Radio Mustang.

रात का वक्त है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी साइड में रखिए और अपने अपने लिए एक लिटिल मी टाइम निकाल दीजिए। आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व पीस, हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और अगर साथ में रोमांटिक म्यूजिक हो तो नाइट और भी स्पेशल बन जाती है। सो स्टे राइट हियर बिकॉज योर फेवरेट लेट नाइट मेलोडीज कंटिन्यू ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. दिल की गहराई से बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए. टू ऑल दोस हु आर वर्किंग कुराज टू यू. दिल चोता नहीं करते हैं. आई नो आपका भी मन कर रहा होगा कि अगर आप घर पे होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन सोचो तो जरा हम भी तो है ना आपका साथ देने के लिए. आपके मनपसंद गानों को हम लेकर आए हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. तो चलिए बोन कुराज टू यू और नेक्स्ट वन गोज आउट स्ट्रेट अवे टू यू माय डियर टू ऑल दोस हु आर वर्किंग.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: आज रात किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं. बस खुद को थोड़ा रेस्ट दीजिए. यू हैव सर्वाइव्ड एवरी डिफिकल्ट डे टिल नाउ एंड टुमारो इज अनदर चांस टू बिगिन अगेन, है ना? तो टुनाइट रिलैक्स कीजिए और इन खूबसूरत खूबसूरत रोमांटिक गानों में आप खो जाइए. बिल्कुल, आप बस हमारा साथ यूं ही देते रहिए और खूबसूरत खूबसूरत यादों को याद करते करते स्माइल कीजिए. आंखों में नमी आ सकती है लेकिन रोकना मत, क्योंकि ये खुशी के आंसू होते हैं जब इंसान अपने गुड डेज, अपने गुड मेमोरीज को याद करते हैं. तो लीजिए, दिस वन गोज आउट टू यू स्पेशली इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती.

वैसे मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, अगर आज का दिन डिफिकल्ट था तो उसे यहीं छोड़ दीजिए। टुमारो डजंट नीड यस्टरडेज स्ट्रेस, है ना। आज की रात सिर्फ पीसफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल म्यूजिक और पॉजिटिव वाइब्स का नाम लेते लेते आप एंजॉय कर लीजिए। दिल को हल्का कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेलोडी को दिल से महसूस कीजिए। दिस इज अ लिटिल एस्केप एक्चुअली, लेट नाइट ग्रूव्स के साथ ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूँ गिनिशा, जो शिद्दत से आपका साथ दे रही हूँ। तो लीजिए ये अगला नगमा आपके नाम।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना ही देते हैं. एक चाय टुगेदर, एक लॉन्ग ड्राइव, एक सिली जोक और वो मोमेंट्स फॉरएवर मेमोरी बन जाते हैं, है ना. अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है, टुनाइट जस्ट बी थैंकफुल एंड लेट्स डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल मेलोडी टू ऑल दोज स्पेशल कनेक्शंस. जी हाँ, स्पेशली ऑन रेडियो मस्ती.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते जी हाँ कब पहुंच गए इस खूबसूरत से शो के एंड में हमें पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि दिल से आपने एंजॉय किया, महसूस किया हर एक खूबसूरत नगमे को जो हमने पेश किया इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। फिलहाल के लिए आप गिनीशा को इजाजत दीजिए, बस अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटते चलिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, शुभरात्रि, शब्बा खैर।

0: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमेजते.
2: नदी जमेजते. आह, सो सेक्सी.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते